मीडियम वेव 16.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि तदनुसार दिनांक 9 अगस्त सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका मित्र अजय धाकड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजे को हैं। अब हिंदी में समाचार कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से नव प्रसारित करेंगे, कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े

0: जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है First in my bloodline to make a chip in India।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडु स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 और 10 सेकंड में लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मातृवंदना।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोत साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए बालाजी राजेंद्र सिंह और साथियों के स्वर में ये शब्द।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथी कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए बेगम परवीन सुल्ताना के स्वर में यह भजन।

बेगम परवीन सुल्ताना के स्वर में अभी आपने सुना है भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शिव साधु कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए नंदिनी शरण और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

नंदनीशरण और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सरस्वती कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, सुनिए चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

0: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। ये प्रसिद्ध है पंछी, इस विषय पर आज का यह चिंतन हाल ही डॉक्टर साकेत अग्निहोत्री का है और वाचिका है दीप्ति अग्निहोत्री।
1: हमारे वे दिन जैसे इतिहास में हमेशा के लिए चस्पा हो गए, जब पंछियों का कलरव सुबह का सहज अलार्म होता था। आंख से पहले कान जाग जाते थे, आंखों के सामने हमारी प्रातः बेला का एहसास कराने वाले सभी जरूरी दृश्य उजालों से भर

0: भरपूर होते थे। पंछियों का संवेद गान पूरी भोर को विभोर कर देता था, क्योंकि इस गान में हमारी आत्माओं की स्वरलिपि होती थी। अलग अलग रंग और आकार में चिड़ियों के झुंड हर घर के आंगन और दालान को मोहक सुरों से भर देते थे। इन सुरों की माया इतनी गहरी होती थी कि पूरा दिन तो चंगा हो ही जाता था, लगे हाथ नकारात्मक विचार के लिए दिमाग के दरवाजे सुबह से ही बंद हो जाते थे। ये हमारी दैनंदिनी का आरंभ था, जो मन में इस तरह के विश्वास को भी जगा देता था कि यदि किसी सुबह पंछी नहीं गाएंगे तो शायद सूरज भी उगने से मुकर जाएगा। पक्षी सूर्योदय के शुभंकर थे और सूर्यास्त की पूर्णता भी इन्हीं सुरों से प्रमाणित होती थी। हमारे रोजमर्रा में इनकी लगातार आवाजाही पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इकोसिस्टम के लिए धमनी और शिराओं का काम करती थी। दुर्भाग्य से ये बात हमें आज तब समझ में आ रही है जब पंछियों की ठौर कहलाने वाले वृक्षों का एक विशाल समुदाय हमारी आवास आवश्यकताओं के नाम पर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। अलग अलग प्रजाति के पक्षी दृश्य से लगभग बाहर हो गए। जब पेड़ों की जान पर ही आ बनी तो पेड़ों में जिनकी जान थी उनका भी वही हश्र हुआ जो पेड़ों का हुआ। अब समूह के बजाय पक्षी यदा कदा और इक्का दुक्का हालत में दिखाई देते हैं। इनकी आवाज में अब प्रकृति का माधुर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का शोक राग सुनाई देता है। शहरीकरण के रूप में विकसित हुई अट्टालिकाओं के बीच में कुछ ही खपरेलें शेष हैं, जिन पर कुछ परिंदों ने शरणार्थियों की तरह पनाह ले रखी है, लेकिन इनकी चिरंजीविता भी संदिग्ध है। पंछियों का हमारे जीवन से इस तरह बाहर उड़ जाना प्रकृति के लिए, मनुष्य समाज के लिए और मानव की कोमलता के लिए भी बहुत बड़ा अपशगुन है। अतीत साक्षी है, हमारे लिए पंछी कभी पराए नहीं थे। हमारे संगीत, साहित्य और चित्रकला में वे आज भी उड़ान भरते हैं। तोता और मैना हमारी लोक कथाओं में सूत्रधार होते थे। वाल्मीकि की रामकथा का आरंभ क्रौंच पक्षियों की करुणा से होता है। यही रामकथा जब तुलसी तक पहुंचती है तब काक भुसुंडी भी कहीं माध्यम बन जाते हैं। पपीहे की पीहू के बिना काव्य में श्रृंगार अधूरा रह जाता। आध्यात्म में भक्ति के धरातल पर अकेला हंस ही ऐसा पक्षी है जो आत्मा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। कबीर ने नश्वर भौतिकता को लक्ष्य कर लिखा है, हंसा जाई अकेला। राग सारंग का तो जन्म ही मोर के स्वर से हुआ है। बुलबुलों ने इकबाल की रचना को सारे जहां की बेहतर रचनाओं में शुमार किया है। यदि घनानंद को चांद ताकने वाला चकोर न मिलता तो संभवतः उनके रस अधूरे रह जाते। पंछियों का पुनर्वास आज के पर्यावरणीय दुर्दिन में समय की मांग है। जैसा कि रहीम ने कहा है, रूठे स्वजन मनाइए। सच तो ये है, पंछी भी हमारे स्वजन हैं। हमें अपने अपने स्तर पर उनकी सम्मानजनक वापसी के सभी जरूरी जतन करने चाहिए और पक्षियों के पक्ष में संदेश फैलाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग भी हमें ही करना चाहिए, क्योंकि पंख पर बंधे संदेशों को इधर उधर पहुंचाने वाले कबूतर तो बरसों बरस पहले इतिहास के पन्नों की तरफ उड़ चुके हैं।
1: पंछी इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। आलेख डॉक्टर साकेत अग्निहोत्री का था और वाचिका थी दीप्ति अग्निहोत्री। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामूहिक चर्चा का आज का हमारा विषय है सोयाबीन एवं तिल की फसल में कीट रोग नियंत्रण, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं

0: डॉक्टर जी सी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन प्रमुखता से लिया जाता है और उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल आदि की फसलें भी बहुत आयात में किसान भाई लेते हैं। किसान भाइयों, इन खरीफ फसलें हमारी, उन फसलों में कीट व्याधियों से इन फसलों को सुरक्षित रखना भी अधिक उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, जैसे सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन की खड़ी फसल में दो तीन प्रकार के कीट आते हैं और ये कीट फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। जैसे सोयाबीन में एक कीट आता है चक्रक भंग, यानी इसको अंग्रेजी में गर्डल बीटल कहते हैं, और यह जो कीट है पत्ती के नीचे तने पर तीन छेद करता है और एक रिंग बनाता है और बीच वाले छेद में अंडे देता है, और ये अंडे से छोटा सा सफ़ेद लार्वा निकलता है और छोटी सी ये गिरार निकल करके रस चूसती है और फिर धीरे धीरे अंदर जा करके उसको तने को खाती है और काला काला कर देती है, खोखला कर देती है, जिससे कि ऊपर वाला भाग है वो सूख जाता है और सूख के पौधा वहाँ से टूट जाता है या लटक जाता है, या ऊपर जो भी फली लगने वाली होती हैं, जो फूल लगने वाले होते हैं, वो नहीं आते हैं और हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार एक इसमें सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मक्खी, एफिड, थ्रिप्स, जैसेड, रस चूसने वाले कीट भी आते हैं और ये कीट रस चूस करके दूसरे पौधों पर रस छोड़ते हैं। कभी कभी फसल में क्या होता है कि पीला एक रोग आता है, पीला मोजैक रोग कहते हैं सोयाबीन का, जो पौधे हैं उनके रस को और जो स्वस्थ पौधे हैं वहाँ पर ये छोड़ देते हैं। लाखों कीट इस तरह से खेत में होते हैं और हमारे जो पौधे हैं इस तरह से स्वस्थ पौधे हैं उनमें ये रोग पहुंचता है और काफ़ी मात्रा में पीला पीला जो है हमारा ये रोग, पीला मोजैक सोयाबीन को ख़राब कर देता है। इस तरह के अगर रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप जो है ट्राइजोफॉस नाम की दवा है, ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर छिड़काव करेंगे तो ये पीला मोजैक रोग और चक्रक भंग और एक सेमी लूपर आता है जो फूल को और कोमल भाग को खाता है, इन कीटों का इस दवा से नियंत्रण हो जाएगा और हमारी सोयाबीन की फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसी तरह से सोयाबीन की फसल में एक जो है रोग आते हैं, पत्ती पर धब्बा रोग आता है और बैंगनी रंग के धब्बे आते हैं, भूरे रंग के धब्बे, और ये धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसे रोग के लक्षण दिखाई दें तो मैनकोजैब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1,250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के मान से लगती है, इसका छिड़काव करेंगे तो इस रोग से जो है आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसी प्रकार उड़द मूंग में पत्ती धब्बा रोग आते हैं और एंथ्रेक्नोज नाम का भी एक रोग आता है, एक सर्कोस्पोरा गोल भूरे भूरे रंग के धब्बे नाम का भी एक रोग आता है, 3-4 प्रकार के रोग आते हैं और इन सभी रोगों के नियंत्रण करने के लिए मैनकोजैब नाम की दवा, ये जो अभी सोयाबीन में बताई थी आपको, यही दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। इसके अलावा तिल की फसल भी हमारे क्षेत्र में बहुत तादाद में बोई जाती है और तिल में भी पत्ती धब्बा एक रोग आता है जो फाइटोप्थोरा नाम के एक फफूंद से फैलता है, गोल गोल धब्बे या वी आकार के धब्बे पत्ती के ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे जब मौसम खराब होता है, बादल हो जाते हैं, हल्की बारिश हो जाती है, ऐसे मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है और तने पर भी चला जाता है और डंडी जो है तने की जो मेन ब्रांच होती है उसकी वो काली दिखाई देने लगती है। जब ये रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है तो हमारी पूरी फसल जो है चौपट हो जाती है और घेंटी भी हमारी ख़राब हो जाती है, उनमें जो दाने हैं वो कम बनते हैं, पोचे रहते हैं या तेल की मात्रा उनमें कम हो जाती है। ऐसा रोग अगर पत्तियों पर धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे या शुरुआत हो रही है तो किसान भाइयों, मैनकोजैब नाम की दवा है, ये दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके तिल की फसल के ऊपर 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव करेंगे तो आप तिल की फसल को भी इस रोग से सुरक्षित कर लेंगे और तिल की अधिक से अधिक आपको पैदावार मिलेगी।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था सोयाबीन एवं तिल की फसल में कीट रोग नियंत्रण और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे।

0: डॉक्टर जे सी गुप्ता। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
1: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी
0: खुशहाली।
2: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करने की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 57वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः

0: अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन् अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसितभारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालकक्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा IIT दिल्ली इत्यत्र परमप्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्तस्य सङ्गणसौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना JD Vance इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ता कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये लेखे श्रीमोदी अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्रवैश्विकसामरिकसहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीयकार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनाम् ऊर्जासुरक्षायाः महत्त्वपूर्णखनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्परहितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासविषये अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। हरघर तिरंगा इत्यभियानम् अद्यारभ्य अस्मिन् मासे 17 दिनांकपर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं राष्ट्र ऐक्यं भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। 2020-2000 वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः सम्मानस्य सामूहिकराष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 125वें वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः CP Radhakrishnan-वर्यः अद्य श्रीविजयपुरं नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरं नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार

0: रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1,386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

आपसे खुशी दिवस वो 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के गाए कुछ भजन और गीत। इनके साथ ढोलक पर संगत होगी श्रवण कुमार शर्मा की। गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समय रहेगा 9:00। सिंधी कार्यक्रम

और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 9:30 पर और 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा 10:05 पर। दोपहर में पुनः फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 11:00। दोपहर 2 बजे संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00। लोक संगीत और सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर और 12:45 पर। महिला कार्यक्रम, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम शिवपुरी की प्रस्तुति हैं। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान का समय रहेगा 2:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं 2:50 पर और 2:03 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। श्रोता साथियों, जैसा भी कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन समय में शाम 5:02 पर आप सुन सकते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम शिवपुरी की प्रस्तुति है। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर। भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 6:02 पर। डगर विकास की यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:00। श्रोता साथियों, यह सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ग्रामीण महिला के लिए कार्यक्रम घर आंगन, इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:20 पर। चर्चा के विषय होंगे काकोरी हत्याकांड घटना और सुकन्या समृद्धि योजना। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे बच्चेदानी एवं स्तन रोगों का बचाव कैसे करें, इस विषय पर भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता में आप सुनेंगे डॉक्टर दीप्ति बुनकर से आरती शुक्ला की बातचीत। और सुर्खियों में यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00, जिसे हम अपने मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: तो श्रोता यदि हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसके साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश

0: रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की जरूरत है। श्री शाह ने सभी देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स का यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा है।
2: मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल्चर का अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुदेव कुटुम्बकम का है। वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई, हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।
0: वहीं समापन के बाद ब्रिक्स देशों के 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सांची स्तूप और म्यूजियम का भ्रमण भी किया। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। मानक कवच प्रणाली उन्नत स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन परिचालन के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना तथा असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए रेल सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। कवच प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक टावर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगरा, तवा, सुहागपुर तथा दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन नई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश की आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इन सभी घरेलू हवाई मार्गों को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जबकि 4 नए मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है।
4: हर घर तिरंगा 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 5 वर्ष पूरे होने के बाद में हर वर्ष हर घर तिरंगा का व्याप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 2 नए विषयों को इसके साथ में जोड़ा है, क्योंकि इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहा है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए

0: उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें।
1: खंडवा में शहरी क्षेत्रों में तिरंगा बाइक, ई बाइक और साइकिल रैली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली और प्रभात फेरी की तैयारी की जा रही है। वहीं स्कूलों में तिरंगा रंगोली, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मंडला जिले में बीती रात से ही अच्छी बारिश हो रही है और सावन में पहली बार बारिश की झड़ी देखने को मिली है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। ये प्रतियोगिता 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जा रही है। खुशी वुमेन्स AP स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे वर्तमान में भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया में हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के प्रवास के दौरान कल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में वृक्षारोपण किया। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज सुसनेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सिंगरौली जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला में कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व व्यवस्थागत गतिविधियों का जायजा लिया। नीमच जिले में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपार ID के निर्माण व सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भुंडवे ने नमो वन में बेम्बू पार्क एवं मियावाकी पद्धति से एक नगर एक जंगल विकसित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी भोपाल से आप सुनिए दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम 11 में लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म दूध का कर्ज का यह गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में फिल्म पाप की दुनिया का ये गीत। गीत लिखा है अनजान ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्म संतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म त्रिदेव का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब
4: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म संगीत का ये गीत। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म खुद्दार का ये गीत। संगीत अनु मलिक ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जैकपॉट का ये गीत। गीत तुराज का था और संगीत दिया था शरीब और तुशी ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब समाचार प्रभात हम अपनी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31

0: स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर

0: करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहाँ निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप

और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।

0: हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी। ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार, बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pehelgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोता साथियों, लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के गायक कुछ गीत। इनके साथ ढोलक पर संगत की है श्रवण कुमार शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के स्वर में ये लमटेरा।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोता साथी, कार्यक्रम लोक संगीत में अभी आपने सुना कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के स्वर में ये लोक भजन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के गाए कुछ गीत। कार्यक्रम में अब आगे सुनिए इनके स्वर में ये एक और लोक भजन।

कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के स्वर में अभी आपने सुना यह सावन गीत। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोतावी कार्यक्रम में अगली जब सुनिए कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के स्वर में ही ये बुंदेली गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत किस कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे थे कृतिन सिंह सूर्यवंशी के गाए कुछ गीत। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार शर्मा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अभी 8:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में कल उन्होंने साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हो गया। समापन अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। और प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। प्रतियोगिता 9 अगस्त से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोत साथियों, आज 9 अगस्त 1925 को आज ही के दिन काकोरी कांड, जिसे कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, यह ऐतिहासिक घटना हुई थी। श्रोत साथियों, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटकर हथियारों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। श्रोता, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया। लगभग 18 महीने चले मुकदमे के बाद कुछ नायकों को

गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। साथियों, अंग्रेज़ी हुकूमत से देश को आज़ाद दिलाने के लिए, उनके अत्याचारों से देश को आज़ाद करने के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने बिना किसी डर के हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके अथक प्रयास ने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला दी। देश के उन वीरों और सपूतों को हम शत शत नमन करते हैं।

श्रोताओ, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत और महत्वपूर्ण निर्णायक चरण था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। श्रोता, इस आंदोलन के कुछ कारण थे। क्रिप्स मिशन की असफलता, भारतीयों को मंचा अधिकार न मिलना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की सहमति के बिना उन्हें युद्ध में झोंकना, महंगाई और ब्रिटिश नीतियों से भी जनता का परेशान होना इस आंदोलन के का एक कारण था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जनता को करो या मरो का मंत्र दिया। श्रोता, इस आंदोलन के शुरू होते ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद देश की आम जनता, युवाओं और महिलाओं ने इसकी कमान संभाली। लेकिन अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता जैसे क्रांतिकारियों ने रेडियो और अन्य माध्यमों से आंदोलन को जीवित रखा। श्रोता साथियों, यह आंदोलन भले ही अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया हो, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत को लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में रखना असंभव है। और इसी आंदोलन का परिणाम था कि महज 5 साल बाद ही वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
0: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग वॉल्यूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र अजय। श्रोता, हर वर्ष 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 1994 में इस दिन को मनाने का संकेत

संकल्प लिया था। दोस्तों, यह दिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति के सम्मान के लिए समर्पित है। नौ अगस्त वर्ष 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। श्रोता, हमारे देश में कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में इस दिन विशेष सांस्कृतिक रैलियां, पारंपरिक नृत्य और लोकगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दोस्तों, बारिश का मौसम कई बीमारियों के लिए खतरा बनता है। इनमें मच्छर जनित बीमारियां खास हैं। श्रोतो, बारिश में गंदगी होने और साफ सफाई के अभाव में मच्छर तेजी से पनपते हैं, जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, मच्छर जनित बीमारियों में मलेरिया जो है वो सबसे प्रचलित बीमारी है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर होती है। मलेरिया एक जनलेवा बीमारी है, लेकिन मच्छर जनित बीमारियों में सबसे घातक संक्रमण जो है दोस्तों वो डेंगू का होता है। डेंगू मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह के समय काटते हैं। डेंगू खासकर जुलाई से अक्टूबर माह में सबसे ज़्यादा फैलता है। दोस्तों, मच्छरों के संक्रमण से होने वाली किसी भी बीमारी में खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति टीवी, एड्स या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला होता है। मच्छरों के काटने से जो संक्रमण होता है उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ठंड के साथ तेज़ बुखार आना, सिर चकराना, घबराहट होना, उल्टी आना व जुकाम होना, शरीर में शर्करा का जो स्तर है वो तेज़ी से गिरना, कभी कभी संक्रमित व्यक्ति का बेहोश हो जाना, कभी-कभी के साथ बुखार और फिर बुखार कम होने पर पसीना आना। श्रोता, आपको बताते हैं कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए क्या करें। श्रोता, सबसे पहले तो अपने घर के आसपास की नालियों को खुला ना रखें। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर में किसी भी तरह का कबाड़ या अनुपयोगी सामान जो हो उसे इकट्ठा ना करें और समय समय पर घर में कीटनाशकों का छिड़काव जरूर करें। घर के खिड़की और दरवाजे जालीदार रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। फुल आस्तीन के कपड़े जरूर पहनें। खाली डिब्बे, गमले और अन्य ऐसी चीज़ें उन्हें घर में ना रखें जिनमें बारिश का पानी कई दिनों तक भरा रहे और जिससे मच्छरों को उनमें पनपने का मौका मिले। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के साथ ही ज़रूरी है इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन से बचने का। जी हाँ दोस्तों, बारिश में वायरल इन्फेक्शन से बढ़ती है आंखों की परेशानी। इस मौसम में आंखों से जुड़ी समस्याएं हर उम्र के लोगों को परेशान करती हैं। वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने से आंखों में दर्द, खुजली और कंजक्टिवाइटिस के मामले जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें इसका बचाव। दोस्तों, लोगों में यह भ्रम है कि संक्रमित व्यक्ति की आंख में देखने से या स्वस्थ व्यक्ति को भी परेशानी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की गई वस्तुओं से भी यह फैलता है। श्रोता, आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकलीफ या समस्या होने पर अपनी मर्जी से कोई दवा या ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी आंखों की नाजुक परतों को जो है वो नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपनी आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। वायरल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण हैं।

जैसे कि आँखों में बार बार खुजली होना। आमतौर पर जो खुजली है श्रोता वो एलर्जीज होती है। मौसम में होने वाला परिवर्तन, धूल मिट्टी और नमी एलर्जी के घटक हैं। कई बार प्राकृतिक तरल जो लुब्रिकेंट है उसे सूखने से भी आँखें लाल हो जाती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलने पर एलर्जी व अन इन्फेक्शन से भी ऐसा होता है। इसलिए आँखों को वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी आँखों को वायरल इन्फेक्शन से बचा कर रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

श्रोता साथियों, बारिश के मौसम में वाटर हार्वेस्टिंग अपनाकर आप काफ़ी मात्रा में जल का संचयन कर सकते हैं। दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल का संचयन, जल का संरक्षण, इसका अर्थ है कि बारिश के पानी को बेकार बहकर जाने से रोकना और उसे किसी टैंक, तालाब या सीधे ज़मीन के अंदर भेजकर इकट्ठा करना है ताकि ज़रूरत के समय इसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, घर की छत पर गिरने वाला पानी पाइप के जरिए टैंक में जमा करना, पानी को ज़मीन के गड्ढों या बोरवेल में डालकर भूमिगत जल को बढ़ाया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ यह है कि इससे काफ़ी मात्रा में पानी की बचत होती है और गर्मियों और सूखे के दिनों में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।

इससे ज़मीन के नीचे का पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग से बाढ़ और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है। तो श्रोता साथियों, आपसे यही अपील है कि बारिश के मौसम में वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, जिससे पानी को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सके। जल की कीमत को समझिए, जिससे आने वाले समय में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। श्रोता साथियों, समय चला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो इस कार्यक्रम से अब अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। अब सिंधी कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

सिंधियत जी सुरहाण बुधण वारे सभी रेडियो श्रोताओं के कविता चांदवानी जी से कबारी नमस्कार। जय झूलेलाल। दोस्तों युवा थियण सिर्फ एक उम्र ही काने, एक सोच आए, एक जज्बो आए, ए इन ही सोच ए इन ही जज्बे के सलाम करण ला हर साल 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनायो वेंदो। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र इन डी की शुरुआत इन लाइ कई दुनिया भर के युवाओं के आवाज मिली सके, उनके आवाज के मंच मिली सके, उजी परेशानियों के खुली करे गालहाए सकन। संयुक्त राष्ट्र महासभा पारा दिसंबर 1999 में ही प्रस्ताव पारित कयो वियो। पहरी बार 12 अगस्त 2000 में ही डी मनायो वियो। दोस्तों इन डी के मनाने जो सिर्फ एक ही उद्देश्य आए त जेके पूरे दुनिया जा युवा आन उए पेंजू परेशानियों पेंजी पढ़ाई उनन जो जेको स्वास्थ्य आए उनन जी समाज में चर्चा थी सके उनन जो विकास थी सके। दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ते एक थीम होंदी आ। 2026 जी थीम आ विभिन्न संदर्भ साझा आकांक्षाएं। छा तो सिखारे ही त भले ही पूरी दुनिया जा युवा अलग आन उन परिस्थितियों अलग आन पर सबिन जो लक्ष्य एक ही भविष्य सुंदर हुए एक बेहतर भविष्य ठही सके। इन भविष्य ला ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनायण जी कोशिश कई वही। दोस्तों असा देश में जिते वनू ता अजकल एक यो ही स्लोगन ता बुधूं हर घर तिरंगा है। दोस्तों यो स्लोगन बुधी जेका देश में देशभक्ति जे प्रति उपासना दी अचे त अचो इन अभियान छाए इन अभियान जे बारे में जेको जोर शोर से पूरे देश में अभियान पियो हले इन अभियान जे बारे में अज असांखे वधीक जान ॾियण ला स्टूडियो में मौजूद आहिनि शिक्षक कन्हैया लाल मूलचंद।

0: जी जेके असां खे हर घर तिरंगा अभियान जे बारे में ॼाण ॾींदा। ॿुधंदासीं।
1: हर घर तिरंगा अभियान, इहो अभियान भारत सरकार पारां देश जी आज़ादीअ जे 75 साल पूरा थियण ते अमृत महोत्सव जे तहत शुरू कयो वियो हिकु ऐतिहासिक जन आंदोलन आहे, जंहिंजो मक़सदु हर भारतवासीअ जे दिलि में देशभक्तीअ जी भावना पैदा करणु ऐं क़ौमी तिरंगे लाइ मान सम्मान वधाइणु आहे। भारत सरकार जे संस्कृति मंत्रालय पारां इन अभियान जी रूपरेखा तयारु कई वई हुई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीअ बि देशवासियुनि खे हिन मुहिम सां जुड़ण जी अपील कई आहे। पहिरीं भारत में झंडो फहिराइण जा नियम याने फ्लैग कोड ॾाढा सख़्त हुआ, जंहिंजे करे आम माण्हू सिर्फ़ ख़ासि राष्ट्रीय ॾींहनि जीअं त 15 अगस्त ऐं 26 जनवरीअ ते या वरी कुझु सरकारी इमारतुनि ते ई झंडो ॾिसी सघंदा हुआ। सरकार इन नियमनि में ढिल ॾिनी, जीअं त देश जो हर नागरिक पंहिंजे राष्ट्र ध्वज खे सहजता सां घर ते फहिराए सघे ऐं संदसि नातो तिरंगे सां वधीक मज़बूत थी सघे। हिन अभियान देश जे आम माण्हुनि खे तिरंगे सां भावनात्मक रूप सां जोड़े छॾियो आहे। इन अभियान जो ख़ासि मक़सदु देशवासियुनि में देश प्रेम ऐं एकता जी भावना खे मज़बूत करणु आहे। तिरंगो असांजे देश जी आज़ादी, मान ऐं शान जो प्रतीक आहे। जॾहिं बि केरु पंहिंजे घर ते तिरंगो फहिराईंदो त उहो पंहिंजे देश जे शहीदनि ऐं वीरनि जे बलिदान खे यादि कराईंदो। तिरंगा अभियान जे मुख्य लक्ष्य जी ॻाल्हि कयूं त उहो राष्ट्रवाद जी भावना वधाइण बि आहे। माण्हू सिर्फ़ लाज़मी तौर ते न पर सचीअ भावना सां देश प्रेमी बणजनि। देश जी आज़ादीअ लाइ जिन वीरनि पंहिंजो बलिदान ॾिनो, तिरंगे खे ॾिसी करे उन्हनि खे यादि करणु ऐं नमन करणु शहीदनि खे सची श्रद्धांजलि थींदी। भारत में घणेई धर्म, ॿोलियूं ऐं जातियूं आहिनि। तिरंगो असांखे हिकु सूत्र में ॿधी करे सेखारे थो त असीं सभई धर्म, जाति ऐं ऊच नीच जो भेद विसारे बसि हिकिड़ा भारतवासी आहियूं। तिरंगे जे टिनि रंगनि जो महत्व, असांखे संदन टिनि रंगनि जी ख़ासियत ऐं संदेश खे समुझणु तमामु ज़रूरी आहे। केसरिया याने नारंगी रंग, इहो रंग साहस ऐं बलिदान जी निशानी आहे। इहो असांखे शहीदनि जी क़ुर्बानियूं यादि कराए थो। अछो रंग, इहो रंग अमन, शांती ऐं सचाईअ जो सूचक आहे। साओ रंग, इहो रंग देश जी खु़शहाली, हरियाली ऐं तरक़ी ते इशारो करे थो। अशोक चक्र, विच में बणियल नीरे रंग जो चक्र धर्म चक्र आहे। हिन अशोक चक्र में 24 लीकूं हूंदियूं आहिनि। इहो सारनाथ में मौजूदु सम्राट अशोक जे सिंह स्तंभ मां खयो वियो आहे, जेको असांखे हमेशह गतिशीलता ऐं तरक़ीअ जी राह ते अॻिते वधण जी प्रेरणा ॾिए थो। 24 लीका माना 24 कलाक, पंहिंजे कर्तव्य जो पालन करणु, जीवन जा 24 मुख्य गुण जीअं त संयम, साधना, आरोग्य, शांति, त्याग, तप, चरित्र, शेवा, भक्ति, खिम्या, प्रेम ऐं राष्ट्रीय एकता जो संदेश ॾियनि था। हिन अभियान में जन भागीदारी ऐं सभिनी जो उत्साह ॾिसण जहिड़ो आहे। कश्मीर खां वठी कन्याकुमारीअ ताईं, नंढे ॿार तोड़े वॾनि ताईं, सभिनी इन में जोशो खरोश सां हिसो वठी देश में हिकु नई मिसाल क़ाइमु कई आहे। स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में ॿारनि पारां तिरंगा रैलियूं कढी नगर वासियुनि खे सुजाॻु कयो वेंदो आहे। सोशल मीडिया ते माण्हू तिरंगे सां गॾु DP रखनि था, या वरी झंडे सां गॾु सेल्फियूं हर घर तिरंगा वेबसाइट ते अपलोड पिणु कनि था। पोस्ट ऑफिस या राशन जे दुकाननि ते घटि अघ में तिरंगा मिली वेंदा आहिनि, जीअं वध में वध माण्हू हिन उत्सव जो हिसो बणिजी सघनि। तिरंगे जी शान में

0: नागरिकनि खे कुझु फ़र्ज़ ऐं नियमनि जो पालण बि करणु घुरिजे। तिरंगो फहिराइण वक़्तु असांखे भारतीय ध्वज संहिता यानि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो आदर करणु तमामु ज़रूरी आहे, जीअं त झंडो कॾहिं बि मेरो या फाटल न हुजे। तिरंगे खे कॾहिं बि ज़मीन ते न रखिजे। जॾहिं बि झंडो लाहे रखिणो हुजे त अदब ऐं पूरे मान मर्यादा सां हुन खे वेढ़े सवें नमूने अलमारी या कबट में साफ़ जॻह ते रखणु घुरिजे। असांजे लाइ फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे त आंध्र प्रदेश जे हिकु महान देशभक्त ऐं स्वतंत्रता सेनानी तिरंगे जी डिज़ाइन ठाही हुई। उहो शख़्स हो पिंगली वेंकैया। देशभक्त पिंगली वेंकैया घणो अभ्यास करे सन 1921 में झंडे जो शुरूआती नमूनो तयारु कयो। पोइ उन में महात्मा गांधी ऐं ॿियनि अॻवाननि जी सलाह ऐं मंजूरीअ सां कुझु बदिलाउ कया विया। आख़िरकार 22 जुलाई 1947 ते संविधान सभा पारां हिन डिज़ाइन खे आज़ाद भारत जे क़ौमी झंडे तौरु मंज़ूरु कयो वियो। हर घर तिरंगा अभियान महज़ हिकु सरकारी प्रोग्राम कोन्हे, पर इहो हिकु भावुक आंदोलन बणिजी चुको आहे। इहो असांखे अहसासु ॾियारे थो त असांजी आज़ादी केतिरी न क़ीमती आहे। अचो त अॼु गॾिजी हिकु प्रण कयूं त सभु गॾिजी करे हर घर तिरंगा अभियान खे सफल बणायूं ऐं पंहिंजे देश जी तरक़ीअ ऐं एकता लाइ हमेशह वफ़ादार रहूं। जय हिंद, जय भारत।
1: दोस्तों, इन तमामु सुहिणी ॼाण खां पोइ वक़्तु आहे हिकु सुहिणे गीत जो। तूं आहीं साहिब, मोहम्मद रफ़ी जन जो ॻायल, राम पंजवानी जन जी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं हीउ सुहिणो गीतु।

दोस्तों विश्व स्टील पेन दिवस। दोस्तों हर साल 11 अगस्त स्टील पेन के सम्मानित करण ला ही विश्व स्टील पेन दिवस मनायो वेंदो आ। 20 शताब्दी में त्रिनिदाद ए टोबैगो में एक अनोखे संगीत जे वाद यंत्र जो आविष्कार थियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा स्टील पेन के सांस्कृतिक ऐं ऐतिहासिक महत्व के मान्यता ॾियण लाइ ही ॾींहं खे मनाइण जी घोषणा कई वई। दोस्तों 9 अगस्त इतिहास जे पन्ननि में लिखियल हिकु अहिड़ी तारीख़ आहे जेके असांजे वीर सपूतनि जे बलिदान लाइ हमेशा यादि कई वेंदी। दोस्तों काकोरी कांड उत्तर प्रदेश जे लखनऊ जे पासे में काकोरी गांव जे पासे 9 अगस्त 1925 में भारतीय क्रांतिकारियुनि पारां हिकु ऐतिहासिक ट्रेन डकैती हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पारां हिन डकैतीअ जो मेन उद्देश्य ब्रिटिश सरकार जे खजाने मां हथियार वठण ऐं स्वतंत्रता आंदोलन लाइ पैसे खे लूटण हो। दोस्तों हिन ऐतिहासिक ट्रेन घटना में असांजा तमाम वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल जणा तमाम नेताउनि खे 1927 में फांसी ॾिनी वई। दोस्तों जीअं त तव्हांखे ॼाण हूंदी मींहं जो मौसमु आहे, सुहिणो सुहिणो मौसमु आहे मींहं। हालांकि मींहुं वधीक पए कोन थो जेतिरो पवणो खपे, पर सावण जो महीनो चालू आहे, मींहं जो मौसमु आहे, त अचो असां ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत बादल आया, मोहम्मद रफ़ी जन जो गायल, किशन राही जन जो लिखियल, राम पंजवानी जन जी म्यूजिक में ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत।

दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त मनायो वेंदो आहे। दुनिया भर जे आदिवासी समाज जे अधिकार उन्हनि जी सांस्कृतिक भाषा परंपराउनि जे प्रति सुजाॻीअ लाइ ही ॾींहुं खे मल्हायो वेंदो आहे। 1994 में पहिरीं बार संयुक्त राष्ट्र हिन ॾींहुं खे मल्हाइण जी घोषणा कई। दोस्तो 15 अगस्त सिर्फ़ हिकु तारीख़ कोन्हे, 140 करोड़ हिंदुस्तानियुनि जे आज़ादीअ जो ॾींहुं आहे। 1947 में देश खे लॻभॻि 200 सालनि जे ब्रिटिश शासन खां पोइ आज़ादी मिली। भारत देश हिकु आज़ादु देश ठहियो। 15 अगस्त देश जो हिकु राष्ट्रीय ॾिणु आहे। देश जे पहिरें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन देश जे लाल किले ते पहिरीं बार तिरंगो झंडो फहिरायो। हीअ ॾींहुं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जहिड़नि हज़ारनि स्वतंत्रता सेनानियुनि जे बलिदान खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते देश भर जे स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी सभिनि ऑफिसुनि में ध्वजारोपण थींदो आहे, झंडो फहिरायो वेंदो आहे ऐं देश में सरकारी छुटी थींदी आहे। दोस्तो तव्हां सभिनि खे बि देश जे आज़ादीअ जूं लख लख वाधायूं। भारत माता की जय। दोस्तो इन देश जे रंगियल में, आज़ादीअ जे रंगियल में ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत, असांजो प्यारो हिंदुस्तान। कला हजारी, कमला केसवानी, गुरदास मलजन जो गायल ऐं गौरधन भारती जन जो लिखियल सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तों हिन गीत सां ही अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो आहे। उमेद आहे ऐं विश्वास आहे त तव्हांखे हीउ प्रोग्राम वणियो हूंदो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई ख़बर सां। जेसि ताईं तव्हां पंहिंजा राया, पंहिंजा सुझाव आकाशवाणीअ जे फेसबुक पेज ते मोकिले सघो था। जेसि ताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल सभ जो।

0: सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: सुनिए।

0: सीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समाअत फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम आईना।
2: आकाशवाणी भोपाल का ये आईना दर हकीकत उर्दू अदब का आईना है, जिसमें हम शायरी, मजाकरे, मजामीन और अफसाने जैसी अदब की मुख्तलिफ असनाफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
3: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
4: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
3: छिन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
4: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
3: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
4: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
3: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
4: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: आओ मिलकर करें प्रयास,
4: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
6: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शिवपुरी जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े की थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर रखी गई है। इसी क्रम में बीते दिनों शिवपुरी के शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नए आवेदन लिए गए और लंबित तथा पहले से अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया गया। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों पोहरी तहसील में एसडीएम जेपी गुप्ता ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विकासखंड पोहरी की ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं जन समस्या निवारण की अगर बात की जाए तो शिवपुरी जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीते 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को जिले के विभिन्न विकास खंडों और तहसीलों में प्रशासनिक टीम सीधे जनता के बीच पहुंचकर जन संवाद शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में आम नागरिकों की शिकायतों को सुना जा रहा है और निराकरण किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खनिया धाना शिविर में उद्यम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्थानीय उद्यमियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। वहीं नशा मुक्त युवा भारत अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में बीते दिनों सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विद्यार्थियों ने लोक संगीत, समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, चित्रकला और रील मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर सभी ने नशा मुक्त भारत के लिए हस्ताक्षर किए और शपथ ली। वहीं नशे को खत्म करने और इसे रोकने के लिए कृतसंकल्पित शिवपुरी जिला पुलिस ने भी बीते दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पिछोर में स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत शर्मा ने विभिन्न स्कूलों में जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। 7 प्रमुख शिक्षण संस्थानों में करीब 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं व शिक्षकों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। शिवपुरी जिले में पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत स्थानीय अमले द्वारा पशुपालकों को नियमित टीकाकरण, बीमारियों से बचाव, पशु हानि से बचाव, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और सॉर्टेड सीमेन योजना की जानकारी दी जा रही है। शिवपुरी जिले में बीते दिनों केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सेवा सुशासन के 12 वर्ष, विकसित भारत एट 2047 और वीबीजी रामजी तथा कारगिल विजय दिवस के विषयों पर चित्र प्रदर्शित किए गए। इनके माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकसित भारत के संकल्प और भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान को दर्शाया गया। जागरूकता कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। शिवपुरी जिले के कोलारस में ग्वालियर संभागायुक्त मनोज खत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिले में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिले के कोलारस और पिछोर विकास खंड को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और मूलभूत बुनियादी ढांचे के स्तर को ऊपर उठाना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण बीते दिनों किया, जिसमें शिवपुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्टेशन का लोकार्पण किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किए गए स्टेशन से यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े और उन्होंने क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई दी। कार्यक्रम में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बीते दिनों शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रनौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिवपुरी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5: शिवपुरी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था रंजीत गुप्ता का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
7: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म कृष का ये गीत। गीत और संगीत है राजेश रोशन का। राजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है उदयभान पाल, जहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और पाल परिवार के सभी सदस्यों ने। साथ ही इस गीत को सुनी फरमाइश की है मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर फिल्म कृष का यह गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा

0: जनहित में जारी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म मुस्कान का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था निखिल विनय ने। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था विनोद मुदर, चेतन नहाता, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और खुशी मुनत ने। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सिंग इज किंग का ये गीत। गीत लिखा था मयूर पुरी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। विवेकानंद कॉलोनी जिला शिवपुरी से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था एकता जैन, मिनी जैन, निखिल, धनंजय, प्रीति, संजय और सत्यल शर्मा ने। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी गांधी कॉलोनी जिला शिवपुरी से ही गजेंद्र धाकड़, सोनू कोड़े, प्रीतिश गुप्ता, अंजार अली, कुणाल शर्मा, अखिलेश यादव, रजनी कौरव, वर्षा और करिश्मा ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई, जरा देख के

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म में बरसात का यह गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम चौहान ने। सौदागर संदरपुरा से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी चौरसिया कॉलोनी जिला ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, लखन चौरसिया और रेखा चौरसिया ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना है फिल्म क्रीचर का ये गीत। गीत और संगीत था टोनी कक्कर का। संदलपुरात्रि से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी यमुनानगर दर्पण कॉलोनी ठाठीपुर जिला ग्वालियर से अनीता जैन, शिवानी जैन, नीलम जैन, सुभाष जैन, चित्रलेखा और ममता ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कयामत का ये गीत। गीत समीर का था और संगीत दिया था नदीम शवन ने। ग्राम रजौता तहसील जोरा जिला मुरैना से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था शैलेंद्र कुशवाहा, सोनू राजपूत, नितिन शर्मा और संजय शर्मा ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी ग्राम कलुपुरा तहसील जोरा जिला मुरैना से ही विश्राम कायम सिंह, विजय सिंह, पान सिंह, भरतलाल, पुष्पेंद्र धाकड़, धर्मेंद्र धाकड़ और कदम सिंह ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये गीत। गीत लिखा था अर्शाद कामिल ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। सारिका नगर दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर जिला ग्वालियर से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था त्रिलोक शर्मा, संदीप राजपूत, बबलू तोमर, प्रदीप शर्मा, चित्रांश, नरेंद्र कुशवाहा और पंकज ने। श्रो साथियों, कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज जबलपुर के राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ संग्रहालय से मंडला जिले के रामनगर चौगान तक बाइक एक्सपीडिशन हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश

0: के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच नर्मदा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। डिंडौरी जबलपुर मार्ग पर जोगी टिकरिया का पुल पानी में डूबने से आवागमन प्रभावित हुआ है और भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में घुड़सवारी खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञ और खिलाड़ी शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने।
2: फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोता, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गाने और होती हैं आपसे ढेर सारी बातें। हम आपको अपने फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर रोज़ सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच और इसका प्रसारण होता है दूसरे दिन 11 बजे। तो आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए और खुश रहिए और आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण यूं ही सुनते रहिए।
3: जी नमस्ते।
2: जी नमस्ते। आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
3: जी आ रही है मैम।
2: कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ।
2: सोनिया कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मंदसौर से।
2: मंदसौर से। कैसी हैं सोनिया जी?
3: हम बहुत अच्छे हैं मैम, और आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ। बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
3: आज मूवी का नाम है जहर।
2: जहर। जहर का कौन सा गीत?
3: सॉन्ग है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। आप कौन बात कर रही हैं?
2: मैं अनुराधा बोल रही हूँ। आप कैसे हो?
3: हम बहुत अच्छे।
2: चलिए अच्छी बात है। अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत और यूं ही आप गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
3: नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय दीदी, आपको हृदय से धन्यवाद करते हुए सरल सप्रेम प्यार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आपके भोपाल में?
0: बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं आप बताइए।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा से, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं। रेडियो सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम जुड़े रहते हैं। पहले मैं रीवा में रहा करता था, अब मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, चलिए आप यूं ही खुश रहें और आकाशवाणी मध्य प्रदेश का आनंद लेते रहें। और आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक गीत है, किशोर कुमार साहब ने गीत गाया है
0: जी।
1: फिल्म का नाम है तपस्या,
0: तपस्या
1: और गीत के बोल हैं जो

0: ही तूने, उसी राह तेरा ही बढ़ते जाना रे। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है
1: और आप गाते भी बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। हृदय धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं बोल रहा हूँ सागर से, मध्य प्रदेश से, पंडित शिव नारायण तिवारी।
1: तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अच्छी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है,
1: कैसा मौसम है वहां पर?
0: बहुत बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया है। हो रही बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, अब आज भी होगी 1-2 बजे दिन को।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद बारिश का मौसम ऐसा झड़ी लगी है जो मन को खुश कर देती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हम
1: क्या करते हैं आप?
0: पंडिताई करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
0: आज बारिश के अनुसार यलगार फिल्म का सुनवाना, संजय दत्त वाली, बारिश
1: जी,
0: का बहाना, आखिर तुम्हें आना है।
1: घर में सब ठीक ठाक है?
0: हाँ, सब लोग ठीक ठाक हैं। ये डेडिकेट करेगा नंदिनी तिवारी को और देवास श्री रानू गुप्ता को,
1: चलिए सुनिए
0: और
1: अपनी
0: आपके
1: पसंद।
0: लिए।
1: जी, धन्यवाद।
0: आप कौन?
1: मैं अनुराधा बोल रही हूँ।
0: थैंक यू मैम।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते जी। जी
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आपका नीमे सुधा बात कर रहा हूँ, जिला रायसेन खापर खेड़ा तीन मरुआ से तुलसीराम साहब।
0: जी, तुलसीराम जी कैसे हैं?
1: सही जी, बढ़िया। आकाशवाणी जबलपुर कार्यक्रम सुन रहे थे अभी हम सारंगा,
0: जी,
1: तो एक हाथ से आज हम मोबाइल लगाए थे और एक हाथ से मतलब रेडियो बजा रहे थे,
0: जी।
1: और जो मुझको याद आया आज बहुत दिन हो गए भोपाल कार्यक्रम में जरूर फोन लगाऊंगा।
0: अच्छा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आशा करते हैं कि बारिश यूं ही होती रहे और पानी की कमी ना हो हमें, है ना?
1: जी नहीं, पिछले साल से तो वास वर्षा जी बहुत कम हो रही है,
0: जी,
1: क्योंकि हमारी ये फसल के लिए तो मतलब लाभदायक वर्षा हो रही है, फरेदी वर्षा हो रही है, लेकिन
0: जी
1: अगर मतलब मध्य वर्षा होगी तो अगले साल के लिए वाटर लेवल हमारे कम जाएंगे, नलकूप होंगे।
0: बिल्कुल। तो बताएं आज का गीत आप कौन पसंद करके लाए हैं?
1: आप कौन जी बोल रहे हैं?
0: मैं अनुराधा बोल रही हूँ।
1: अनुराग जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: आज जी मैंने शायद बेटा फिल्म का गीत है ये,
0: जी।
1: सजना मैं तेरी तू मेरा दुनिया से कुछ लेना, शायद कुमार सानू जी की आवाज है और
0: अच्छा,
1: नदीम श्रवण जी का संगीत शायद।
0: चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: और ये आप सभी को, हमारे सभी मित्रों को बरसात होते हुए सबको नमस्कार।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: आदित्य चौहान
0: जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताएं अपने बारे में। हेलो,
1: आरती तिवारी।
0: आरती तिवारी कहाँ से बोल रही हैं आरती?
1: बांदरी से।
0: कहाँ से?
1: बांदरी से।
0: अच्छा, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मुस्कान फिल्म को।
0: मुस्कान फिल्म का कौन सा गीत? हेलो, हाँ आरती बोलिए, कौन सा पसंद किया है गीत आपने?
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: हाँ जी,
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: जाने मन चुपके चुपके, क्या करती हैं आरती?
1: खाना बना रहे।
0: अच्छा, खाना बना रहे हैं, क्या बना रही हैं खाने में?
1: सब्जी, आलू टमाटर।
0: चलिए आरती जी, हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंद का गीत। आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जाने मन चुपके चुपके, सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: फोन करेंगी। सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हम जानना चाहेंगे कि हमसे कौन बात कर रहा है।
1: जी मैम, मैं नई गई सिलोड़ी से, परमलाल साहू बोल रहा हूँ मैं।
0: साहू जी
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म सुना दीजिए हेरा फेरी का।
0: अच्छा,
1: तकदीर
0: तकदीर
1: तकदीर टाइटल सॉन्ग मैम।
0: अच्छा, गाना भूल गए आप?
1: जी, बहुत खुशी हो रही है मैम, पहली बार कॉल लगा है।
0: अरे वाह, स्वागत है आपका एक बार फिर, और आपने फ़ोन लगाया, आपको पहली बार लगा, और देखिए ना आपको कितनी खुशी हो रही होगी आज, है ना?
1: जी, बहुत खुशी हो रही है मैम।
0: कैसे हैं आप, कहाँ पर रहते हैं?
1: जी मैम, ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबलपुर के पास में है।
0: अच्छा,
1: नेगई सिरोड़ी एक छोटा सा गाँव है मैम।
0: अच्छा, तो कैसा मौसम है वहाँ का?
1: मौसम बादल छाए हुए मैम, पानी नहीं गिर रहा है।
0: पानी नहीं गिर रहा है?
1: जी
0: जरूर गिरेगा, क्योंकि मौसम बारिश का ही है। आप इंतज़ार कीजिए और खुशियाँ मनाइए, यूं ही गुनगुनाते रहिए ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्ते मैम, नमस्ते।

0: फोन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे श्रोता कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं हमसे?
1: जी, मैं जीनत परवीन बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं जीनत जी।
1: जी,
0: कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: क्या करती हैं जीनत?
1: बस हाउसवाइफ हूँ, घर के ही काम।
0: अरे, घर के काम भी बहुत कुछ होते हैं
1: जी।
0: और हाउस वाइफ नहीं होता है, हाउस को संभालने वाला जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है सम्राट।
0: सम्राट
1: जी, गाना

0: बताएं कौन बोल रहे हैं
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी, कितने दिनों बाद फोन लगाया आपने?
1: हो गया काफी टाइम, याद तो नहीं है लेकिन एक हफ्ता से तो ज्यादा हो ही गया होगा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: महोबा से? क्या हाल है महोबा के?
1: ठीक है, अभी पानी बरसा है एक दो दिन, तो पहले तो 15 दिन से बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा था।
0: अच्छा,
1: परेशान थे किसान लोग।
0: अच्छा, तो चलिए, बारिश का मौसम है और इस मौसम में आप कौन सा गीत सुनेंगे? हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइए।
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा दिल का रिश्ता।
0: दिल का रिश्ता
1: जी,
0: कौन सा गीत है इसका?
1: दैया दैया दैया।

फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 11:58 हुए हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। इनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने आज भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर राष्ट्रनायकों तथा अमर सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। अमरीका सरकार उस नियम को खत्म करने पर विचार कर रही है जिसके तहत नौकरी जाने के बाद कुछ विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत भोपाल की श्याम नगर बस्ती में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अधिकारियों ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण किया। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज संभावना के तहत गोंड जनजाति के गोंडी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी और भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में घुड़सवारी खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञ एवं खिलाड़ी शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

0: company.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 12 बजे हैं और अब हम पेश कर रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा हमने लिया था फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था, ओपी नैयर की धुन थी और बोल थे मधु सुल्तानपुरी के। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, अस्मा सालिया, साइमा और मुस्तफ़ा खान, साथ में हैं रहूब भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग आकोला से इसी गीत को सुनना चाहा था रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी आई थी संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ यह गीत, फरमाइशी नाम गीत के बाद।

इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान और जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से अगली चिट्ठी आई है प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। अगला खत आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून, डुमगांव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम और दानिश अंसारी की। सारिमपुर बक्सर से ये खत लिख भेजा है हमारे इन दोस्तों ने, राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है अब्दुल्ला फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है राहुल देव बर्मन की धुन, बोल आनंद बख्शी के।

इसी गीत को सुनवाने के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, ग्राम पंचायत बैठना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और

रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश जो है तीत, इसे सुनवाना चाहा है हमारे इन सभी दोस्तों ने, ठीक भेजी है महाराष्ट्र से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनद्वीप और अनिल शर्मा ने, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है, शाहूनगर यमतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर ने इस गीत को सुनना चाहा है।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है तीन देवियाँ। इस गीत को शब्दों से सजाया है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

पारस मणि फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर इस गीत को शब्द दिए हैं असद भोपाली ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी दोस्तों ने लेक सिटी उदयपुर से रमेश चंद्र माली, जब्बार मोहम्मद, नरेश दवे, नजीब खान, मंजू निम्मी और अशरफ खान ने। गोला बाजार बक्सर से शुद्धानंद आर्य, अभयानंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आपने सुना आपकी फरमाइश का ये आखिरी नगमा। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:25 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंत

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12:30 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे की 25वीं कड़ी।

प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखित उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 25वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा शब्द के अर्थ को प्रकट या प्रकाशित होने के रहस्य को जान गए हैं और ये शिक्षा उन्हें विदुषी वेश्या हीरा ने दी है। राजा उज्जैनी वापस आ गए हैं। वे महालय न जाकर महाकाल के समक्ष नत हैं। अब आगे

0: अवंती की ओर चल पड़े राजा भर्तृहरि। नगर प्रवेश के लिए उन्होंने महावन का मार्ग चुना। यह अपेक्षाकृत निर्जन मार्ग है, साधु संन्यासी ही उधर से आते जाते हैं। वन में 84 शिवलिंग और अष्ट भैरव का वास है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 गणेश हैं, 24 देवियां भैरवियां हैं। अतः यहां न तो कोई वेश पर ध्यान देता है और न रूप पर। लोक श्रुति के अनुसार महावन में देव देवियां मानवस्य में विचरण करते रहते हैं, अतः कोई किसी को टोकता नहीं। क्षिप्रा पर पहुंच भर्तृहरि ने देर तक स्नान किया। उसके पश्चात मंदिर में महाकाल के सामने नेत्र बंद कर नच्छिर खड़े हो गए। ज्योतिर्लिंग पर दृष्टि पड़ते ही पलकें स्वयं मुंद गईं, मन शरणागत हुआ और कामना विस्मृत। पुजारी महाराज को पहचान कर कहता है, महादेवी को सूचना पहुंचाओ कि महाराज महाकाल के मंदिर में हैं।
1: स्वामिनी, महाराज के आ जाने की सूचना है, महाकाल की अर्चना में हैं वे।
2: वैसे का वहीं पहुंचकर हम महाराज का स्वागत करेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
1: किंतु महादेवी,
2: तुमने सुना नहीं वैसिका, हम सोचते हैं कि महाकाल मंदिर पर ही उनका स्वागत करें, उन्हें प्रसन्नता होगी।
1: स्वामिनी, मेरे मत से आपको महाराज के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
2: वैसिका, हमारी कृष्णता मानकर वो रूठ जाएंगे।
1: रूठों को मनाया ही जाता है, वो अपने कक्ष में पहुंचे तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं वहां से अभी परिचर परिचारिकाओं को हटा देती हूँ। महाराज किसी को भी आवाज दें, सामने आप ही पहुंचेंगी। वो जो भी मांगे आप ही प्रस्तुत करेंगी।
2: हम समझ नहीं पा रहे वैसिका।
1: इतने वर्षों से महारानी हैं आप, एक दिन दासी का दायित्व वहन कर लीजिए। संकोच न करें, महारानी हो या दासी, स्त्री ही रहेगी वो।
3: जीवक देवी वैसिका की प्रतीक्षा में है।
1: कहो बंधु, महामात्य की क्या आज्ञा है?
3: नरेश महाकाल के मंदिर में है, महामात्य वहां पहुंच रहे हैं। मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि महादेवी
1: महादेवी यहीं भेंट करेंगी महाराज से।
3: किंतु महामात्य ने तो कहा है।
1: ये महारानी ने कहा है, महामात्य को बता देना, फिर उनकी जो भी आज्ञा हो।
0: महाराज के आगमन का समाचार उज्जैनी के आकाश पर बिजली के आवेग सा कौंध गया। महामात्य तो महाकाल के प्रांगण में गति से पहुंचे ही, अन्य राज्याधिकारी आमात्य और बलाधिकृत भी वहां जुटने लगे। देखते देखते अपार जन समूह मंदिर में एकत्र हो गया। उत्सुकता, आश्चर्य, जिज्ञासा, अनिश्चय से अपने नरेश पर एक टक दृष्टि लगाए देखता हुआ जनसमूह और ब्राह्मण वेशधारी भर्तृहरि अविचल, निष्कंप, ध्यानमग्न महाकाल की उपासना में लीन, एक पवित्र मौन प्रांगण में पसरा हुआ।

0: महामहिम धर्मोपाध्याय महोदय, प्रवास काल में नटराज के वाद्यनाथ से उत्पन्न शब्द के रूप, प्रभाव और प्रतीत के संयोजन का प्रसाद है ये ग्रंथ, जिसे मैं महाकाल के चरणों में समर्पित करता हूं। विद्वत समाज इस पर विचार करे, इसे वाक्यपदीयम कह लीजिए, अतः जो भी विद्वत जन उचित समझे। आदरणीय महामात्य,
1: महालय की ओर पधारे महाराज, सब कहूंगा। वो चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। विद्वत सभा से रात के तीसरे पहर में लौटकर भर्तहरि कोई सूत्र गुनगुना रहे थे। चंपा वस्त्र बदलने में उनकी सहायता कर रही थी।
0: महादेवी कहाँ हैं चंपा?
2: अपने कक्ष में स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हैं।
0: चंपा
2: जी,
0: तुमने कभी कुछ मांगा नहीं हमसे। चंपा, हम कुछ पूछ रहे हैं, तुमने हमसे कभी कुछ चाहा नहीं।
2: दासी को बिना मांगे ही स्वामी की अकल्पनीय कृपा प्राप्त हुई है।
0: हमारी ओर देखो चंपा, क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं चाहिए?
2: हाँ देव, कुछ नहीं।
0: चंपा, तुमने मेरी संतुष्टि के लिए सदैव ही अपनी इच्छाओं का होम किया है ना?
2: वही तो दासी का धर्म है स्वामी।
0: चंपा,

0: तब है नहीं, चिंता ये है कि तब कुमार को दूध कौन पिलाएगा। स्वामिनी का तो दूध उतरता ही नहीं।
1: मेरा अनुमान सत्य निकला, कुमार को जन्म देने वाली माता तुम हो। तुम चंपा, एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया चंपा, दूसरा ये कि
0: सामने के विषय में कोई प्रश्न ना करे देव। मैंने स्वामी से अब तो कुछ नहीं मांगा, बस इतनी कृपा मेरी याचक छोली में डाल दीजिए।
1: अब कुछ नहीं पूछूंगा, शांत हो जाओ पापा, अब कुछ नहीं पूछूंगा। तुम जानती हो कि पिंगला के प्रति अतीव राग है, प्रबल आकर्षण है। उसके प्रति संदेह का जो बीज मेरे मन में पड़ा है, वो भीतर ही भीतर बैठा आंखें झपकाता रहता है। विकलता बढ़कर पलायन की है, बार भागता हूं और बार बार संबंधों की उसी भूमि पर लौटता हूं। चंपा, तुम कभी पिंगला को ध्यान से देखना, उसका लावण्य मुरझाता जा रहा है। पाटल जैसे कपोलों की त्वचा में संकुचन की रेखाएं आ रही हैं। मैंने देखा था कि एक दिन मेरे द्वारा चुम्बन लिए जाने पर उसके माथे पर उलझन सी आई, आंखों में एक अस्वीकार जैसा कुछ था। चंपा, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया।
0: देव,
1: समय नहीं बीता, हम ही बीत रहे हैं।
0: देव, मद्यपान यही ले आऊं?
1: चारों ओर मद ही मद है, राजमद, धनमद, यशमद। अभी अभी मैं यश के मद में तैरता हुआ पहुंचा हूं। कहीं पांव रखता था तो कहीं पड़ते थे। मदिरा का मद उसके सामने नगण्य है चंपा, फिर भी मदिरा ले आओ।
0: जी देव।
1: संभव है ये यश के मद से मुझे त्राण दे, या फिर तुम्हें उससे सेवा की संतुष्टि मिल सके। और मदिरा यहां रखकर तुम सोने चली जाना चंपा।
0: जी देव।
1: मुझे दर्शन दो गुरु, दर्शन दो, अपनी शरण में ले लो मुझे। देख देख, समझ लिया मैंने, ये संसार स्वार्थ के ताने बाने का भ्रमजाल है सब ये गुरु। मैं और मेरे की माया में फंसा हुआ मैं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ नाथ। अलग अलग गोरख गोरख, अलग अलग गोरख गोरख।
0: कोई आ गया स्वामी?
1: ए? चंपा, तुम रात भर द्वार पर थी क्या?
0: महाराज कुछ कह रहे थे।
1: कुछ कहा मैंने? स्वप्न में कुछ कहा होगा।
0: सुना है भोर का स्वप्न सच होता है देव।
1: महाकाल की शंख ध्वनि सुनाई दे रही है चंपा। वज्र भैरव जाने कहां होंगे, उन्होंने बहुत दिनों से सुधी नहीं ली। मनुष्य कैसे कैसे भ्रमों के साथ जीता है। तुम जो संदेह रहित हो वो है अस्तित्व ही, और जो संशय के वृत्त में है वो शासिका स्वामिनी है। और मैं भी कहां सत्य को स्वीकार कर पाता हूं। संकल्प लेकर गेह से भागता हूं और देह की कामना बनकर लौट आता हूं। कोई बात तो है चंपा, जो इन सुख साधनों के बीच भी एक विकलता मेरे आसपास सांस लेती रहती है। लगता है ओह, जाने क्या क्या लगता है। जाओ चंपा, जाओ अपनी स्वामिनी के पास जाओ।
0: जो आज्ञा देव।
1: उनसे कह दो कि अब वो निर्वाह की यातना से स्वयं को मुक्त माने।

0: कम होती जा रही है। क्रमशः वो पूर्णतः उदासीन और निरपेक्ष हो गए हैं। राजकीय कार्य अब महामात्य की ओर ही हैं। समय समय पर वो नरेश से मिलने आते, किंतु वहां उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाते। नरेश गोपनीय मंत्रणाओं से भी अलग रहते हैं। इनमें सेनापति के अतिरिक्त वैसिका को सम्मिलित किया जाता। कुमार विक्रम को बार बार अवंती आना पड़ता, कभी महामात्य के बुलावे पर तो कभी स्वयं ही। उनकी उद्दंडता अब शांत है। महाराज की उपस्थिति और महामात्य की योग्यता से सब सुचारू चल रहा है, या फिर महाकाल ने अवंती का संचालन ले लिया है।
1: धृष्टता क्षमा करे नरेश, मुझे विषाद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप प्रजा के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। ग्रीष्म और पावस के पश्चात इस बार शरदोत्सव में भी जनता आपके दर्शनों से वंचित रह गई है।
2: महामात्य, प्रजा को चाहिए कि वह अयोग्य राजा को पदच्युत करके अपना दूसरा राजा चुन ले। ये जनता का जन्म सिद्ध अधिकार सदा से रहा है।
1: ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये निर्णय अकस्मात क्यों?
2: अकस्मात नहीं आर्य, न जाने कब से द्वंद्वग्रस्त हूं। जीवन को बहुत निकट से देखा और उसे विश्लेषित किया, सत्य को समझने का प्रयास किया, भटका, जहां से चलना शुरू किया वहीं लौटकर आ भी गया। जाने दें, पूज्य पिता के समय से ही आप अवंती राज परिवार के शुभ चेता और राज्य के संकट मोचक रहे हैं। आपके पुत्रवत नरेश भर्तृहरि में शासन की ना तो इच्छा ही शेष है, ना सामर्थ्य बची है।
1: राजन,
2: कृपया स्वीकार करने दीजिए मुझे। अब तक भर्तृहरि किस तरह और कैसे इन भवनों, इन अट्टालिकाओं के अंधेरों से बंधा रहा, अब प्रकाश मुझे बुला रहा है। प्रजानम विनयात दानात रक्षणात भरणादपि का दायित्व मुझे बंधन लगता है। गुरु के दर्शन और आज्ञा की प्रतीक्षा है मुझे।
1: तो क्या राजा भर्तृहरि योगी सन्यासी होना चाहते हैं?
2: मुझे नहीं पता महामात्य, नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं बंधन, विकलता, कर्तव्यों के पाश, भ्रम जाल से मुक्त होना चाहता हूं महामात्य, जिनका भय हर क्षण मेरा पीछा नहीं छोड़ता। आर्य, आपने भी तो देखा है वज्र भैरव को, मैंने उन्हें गाते सुना है। कनक कामनी त्यागे दोई, सो जोगे स्वर निर्भय होई। योगी होना निर्भय होना है, जन्म से, यश अपयश से, आस और त्रास से। जिस धरा को सैकड़ों राजा अपनी अपनी मानकर मर गए, परंतु जो किसी ने भी नहीं भोगी, ऐसी पृथ्वी का राजा बनने का क्या अभिमान। हास्यास्पद तो यही है कि उस भू के लघुत्तर अंश को भी पाकर लोग स्वयं के भूपति होने का अभिमान पाल लेते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी महामात्य।
1: महाराज, फिर विचार करें, विचार करें। कनक शंगा, उज्जैनी और अवंती की गरिमा और यश का, महादेवी पिंगला और अबोध कुमार के भविष्य का, उस कालातीत साहित्य अवदान का जो मानव जाति को आपने दिया है, सोचें, सोचें कि क्या आपका निर्णय समयोचित और समुचित है। कर्म भूमि से पलायन यूं भी कायरता कही गई है महाराज।
2: आर्य, अब सहा नहीं जाता, मेरे लिए दो ही मार्ग अब शेष हो रहे हैं। आत्मग्लानी में मृत्यु का वरण करूं, अथवा गुरु गोरखनाथ की कृपा पाकर संसार को मृत्यु के भय और कष्टों से उबारने का प्रयत्न करूं। आपके अनेक उपकार हैं मुझ पर, अवसर मिला तो अपने अपराध के लिए सभी से क्षमा मांग लूंगा। पिंगला, चंपा, शची, चारुमित्रा से भी। भाग्यहीना वयसिका को क्या कहूं, जिसका दुर्भाग्य इस महालय के लिए महौषधि बन गया। अब राज्य को जैसे भी संभाले आप।
1: गुरु गोरखनाथ को आप कहां खोजेंगे?
2: जहां भी वो हो, वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
1: कामरूप कहां है?
2: सुना जाता है कि ब्रह्मनद और कदलीवन के बीच कहीं है।
1: ओह, तो मेरा भी एक आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा राजन। आपकी यात्रा में जीवक आपके साथ रहेगा। गंगा तट पर आपको बंगदेश के लिए नौकाएं मिलेंगी। वहां जाकर राजकुमारी मैनावती से भेंट कर लें। मैनावती निश्चित रूप से कामरूप का मार्ग जानती होंगी।
2: जीवक आपका विश्वस्त अनुचर और रक्षक है महामात्य, उसकी अनुपस्थिति में आप आरक्षित नहीं हो जाएंगे।
1: प्राणांतक रोग से बच गया हूं नरेश। पता नहीं कि त्रिलोचन की औषधियों से जीवन मिला या फिर वैसिका की सुश्रुषा ने बचाया। क्या पता दोनों ही माध्यम रहे हों। किंतु महाकाल की इच्छा नहीं होती तो ये भी क्या कर लेते। आपने ठीक ही कहा, जीवक अत्यंत विश्वसनीय है अपनी स्वामी भक्ति के कारण। इसलिए मैं उसे आपके साथ भेज रहा हूं। वो मैनावती के यहां तक आपको पहुंचाकर लौट आएगा। महाराज, फिर आप होंगे और आपकी खोज।

0: यहां राजसेवक दो अश्वों को लेकर उपस्थित है महाराज।
1: ठीक है जीवक, हमें शीघ्र प्रस्थान करना है।
2: सिंह द्वार के सावधान रक्षकों ने राजा भर्तृहरि को तीव्र गति से द्वार के बाहर जाते देखा। उनके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे और न ही राज चिन्ह द्योतक कोई अन्य संकेत। जीवक भी साधारण वेश में, कमर से बंधी हुई तलवार अवश्य उसके पास थी और थीं सावधान चौकस निगाहें। उज्जैनी से बाहर निकलकर भर्तृहरि घूमे और उन्होंने धवल अट्टालिकाओं और स्वर्ण कलशों को प्रणाम किया और चल पड़े अपनी अबूझ अनिश्चित यात्रा पर गुरु गोरखनाथ की खोज में पूर्व दिशा की ओर।
0: महाराज, उज्जैनी से हम दूर आ गए हैं।
1: हाँ जीवक, उज्जैनी पीछे छूट गई है। अब मैं राजा नहीं हूं और ना ही तुम सेवक। बंगाल के पाल राज्य में पहुंचने तक तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मार्ग दुष्कर और सुदीर्घ है और हमें चलते ही जाना है।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: थल और जल मार्गों से चलते चलते अंततः राजा भर्तृहरि पाल राज्य के राजद्वार तक जा पहुंचे, जहां भर्तृहरि ने जीवक को विदा किया।
1: जीवक और नहीं, यहां से तुम उज्जैनी लौट जाओ। अब तक के साथ के लिए तुम्हारा धन्यवाद। महामात्य को बताना कि तुमने पूरी सुरक्षा के साथ भर्तृहरि को उसकी बहन मैनावती के राज्य की सीमा तक पहुंचा दिया है।
0: महाराज, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके किसी काम आ सका। प्रणाम महाराज।
2: मैनावती को अनुज के आगमन की पूर्व सूचना मिल गई थी। उसने राजा भर्तृहरि का उल्लासपूर्वक स्वागत किया और पाल राज्य इस अवसर पर रंगारंग उत्सवों में डूब गया। उत्सव दिन रात चलते रहे। एक दिन भाई बहन को वार्तालाप का अवसर मिला।
3: तो तुम्हारी यात्रा कामरूप के लिए है?
1: हाँ दीदी,

0: निश्चित अटल,
1: हाँ
0: अवंती किसके भरोसे छोड़ दी है?
1: महाकाल और महामात्य उसकी देखभाल करेंगे दीदी।
0: काम रूप जानने का उद्देश्य?
1: गुरु गोरखनाथ।
0: गुरु गोरखनाथ ने बुलाया है?
1: नहीं, मुझे स्वयं गुरु तक पहुंचना है। वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
0: वज्र भैरव कहाँ हैं?
1: तब के बाद भेंट नहीं हुई उनसे। वो यकायक आते हैं और जाने कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ होंगे।
0: अनुज, कामना की उमंग भूमि है कामरूप। भगवान शिव का तप भंग करने के लिए कामदेव ने अपनी माया वहीं रची थी। शिव के तेज से भस्म हुए काम की पत्नी रति को उन्होंने वही काम को अनंग होने का वर दिया था।
1: इस अनुश्रुत से मैं परिचित हूं दीदी।
0: काम देश में संयम, विवेक, अनुशासन सभी कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है भैया। इसलिए उस भूमि पर तप और योग की परीक्षा होती है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी भी वहां स्त्री की कामना से झुलसने लगते हैं। वहां मत जा रहे अनुज। वहां की स्त्रियां सर्वाधिक मायावी हैं। गुरु ने बताया है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ भी कामरूप पहुंचकर इसी माया जाल में बंदी होकर तप और योग को बिसरा बैठे थे। उन्हें गोरखनाथ ही बचाकर लाए थे।
1: मैंने ये भी सुन रखा है।
0: इसलिए मेरा कहना मान। उधर मत जा रहे अनुज। उज्जैनी नहीं लौटना चाहता तो फिर यहीं रुक। तुझ पर यदि गुरु की इतनी कृपा है तो मेरा विश्वास है कि वो भी तेरे लिए सोच रहे होंगे। वो तेरी श्रद्धा और समर्पण को समझेंगे और अवश्य मिलेंगे।
1: अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा बहन, और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैंने योग के मार्ग को ही चुन लिया है बहन, योग का मार्ग।
0: जैसी आदिनाथ की इच्छा। तू जा, किंतु वहां पहुंचकर गुरु गोरखनाथ तक कैसे पहुंचेगा तू? मैं तेरी किंचित सहायता कर सकती हूं। ब्रह्मनद के पवित्र जल को छू रहे पर्वत की एक गुफा में एक सिद्ध तांत्रिक निवास करते हैं। वही देंगे तुझे गुरु गोरखनाथ का पता। तुम्हें वहां तक नखला मेखला पहुंचा देंगी, केवल वहीं तक। दूर से पर्वत दिखाकर वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। किंतु सावधान भैया, सिद्ध गुफा के द्वार पर एक सिंह पहरा देता है।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 25वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पदम भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, पिंगला कंचन राजानी, जीवक तनवीर अहमद, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, चंपा अनुराधा, महामात्य अर्शद बाल और मैनावती दिव्या पवार, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने

0: सुना कामिनी काय कांतारे की 25वीं कड़ी का प्रसारण। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हम हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज जबलपुर के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय से मंडला जिले के रामनगर चौगाम तक बाइक एक्सपीडिशन हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदयाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बाद पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भोपाल के मानव संग्रहालय में धागा एक पहचान के समापन समारोह में रिवायत फैशन शो का आज दोपहर में आयोजन किया जाएगा और भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में घुड़सवारी खेल के विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ और खिलाड़ी शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। एक बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहनों, आज हम इतिहास के उस स्वर्णिम और क्रांतिकारी अध्याय को याद करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ बहनों, हम बात करने जा रहे हैं 9 अगस्त यानी आज ही के दिन 1925 के उस ऐतिहासिक काकोरी कांड की, जो हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत साहसिक और गौरवशाली पृष्ठ है। बहनों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह त्याग, बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण था। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट स्थित काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार का वह धन प्राप्त करना था जिसका उपयोग क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता था। इस साहसिक अभियान का नेतृत्व महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह आदि लोगों ने किया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की और लंबा मुकदमा चलाया। अंततः रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। इन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगा दी। काकोरी कांड ने भारतीय जनता को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल कुछ नेताओं का उद्देश्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अधिकार है। इसी विचार ने आगे चलकर संविधान में हम भारत के लोग की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया।

संविधान जनता की सर्वोच्चता का दस्तावेज है और यह भावना स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों से ही विकसित हुई। बहनों, काकोरी कांड के क्रांतिकारी जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट हुए। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की मित्रता भारतीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का अमर उदाहरण है। बहनों, काकोरी कांड हमें केवल साहस की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल युद्ध जीतने से नहीं होता, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने से होता है। आज हम काकोरी कांड दिवस मनाते हैं, तब हमें केवल उन वीरों को श्रद्धांजलि ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का भी संकल्प लेना चाहिए। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। काकोरी के वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त किया। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे और उन अमर बलिदानियों के सपनों का भारत बनने में अपना योगदान देंगे।

बहनों, कहा जाता है कि किसी भी घर के संस्कार और सलीके को देखना हो तो उसके भीतर झांक कर देखिए। और आज का हमारा अगला विषय यही है कि आपकी सफाई के प्रति आपकी रुचि बताता है आपका बाथरूम। बहनों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय केवल उसके कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं मिलता, बल्कि उसकी आदतों और रहन सहन से भी मिलता है। घर का सबसे निजी स्थान बाथरूम होता है और उसकी स्वच्छता यह दर्शाती है कि व्यक्ति सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। यदि बाथरूम साफ सुथरा हो, वहाँ गंदगी ना हो, फर्श सूखा हो, कूड़ेदान का सही उपयोग हो और नियमित रूप से सफाई की जाए, तो यह न केवल हमारी अच्छी आदतों का परिचय देता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। इसके विपरीत, गंदा बाथरूम अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। बैक्टीरिया, फफूंद और दुर्गंध का सबसे अधिक खतरा ऐसे स्थानों पर ही होता है। बहनों, स्वच्छ बाथरूम केवल दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, जिम्मेदारी और स्वच्छ जीवन शैली का प्रतीक है। जब हम अपने घर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को साफ रखते हैं, तो हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान ने भी हमें यही संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होनी चाहिए और घर में भी बाथरूम की स्वच्छता को विशेष महत्व देना चाहिए। बहनों, स्वच्छ बाथरूम केवल एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सोच, संस्कार और स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दर्पण है। इसलिए हमें हमेशा अपने बाथरूम और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं थोड़ा समय खुद पर खर्च करें के विषय में। बहनों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी जिम्मेदारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए समय निकालना ही भूल गए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पढ़ाई, नौकरी, परिवार, मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी इच्छाओं, अपने स्वास्थ्य और अपनी मन की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन बहनों, एक प्रश्न हम सभी को स्वयं से पूछना चाहिए। यदि हम स्वयं ही स्वस्थ, खुश और मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो दूसरों की जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? बहनों, खुद पर समय खर्च करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। जैसे किसी वाहन को समय समय

पर सर्विस की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर और मन को भी आराम, देखभाल और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ा समय खुद पर खर्च करने का अर्थ केवल आराम करना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी सेहत का ध्यान रखना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नई चीजें सीखना, अपने परिवार और मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, अपने सपनों और लक्ष्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों से सीखना और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमारा बहुत अधिक समय घेर लिया है। कई बार हम घंटों तक स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन 5 मिनट भी अपने मन की बात सुनने के लिए नहीं निकालते। यदि हम प्रतिदिन केवल आधा घंटा भी स्वयं के विकास के लिए दें, तो कुछ महीनों बाद हमारा व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। बहनों, खुद पर समय खर्च करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। आज तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, योग या शांत वातावरण में बिताएं, तो हमारा मन अधिक स्थिर और सकारात्मक बन सकता है। जब मन शांत होता है, तब हमारे निर्णय भी बेहतर होते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सफल व्यक्तित्व केवल मेहनत ही नहीं करते, बल्कि अपने शरीर, मन और विकास के लिए भी समय निकालते हैं। वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि खुद से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब हम स्वयं को महत्व देंगे, तभी हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। बहनों, यदि हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट केवल अपने लिए निकालेंगे, तो इस समय में हम कुछ नया सीखेंगे, व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे या अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। यह छोटा सा निवेश हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। बहनों, जो स्वयं का सम्मान करता है, वही जीवन में सम्मान पाता है। जो स्वयं पर समय लगाता है, वही अपने सपनों को साकार बनाता है। इसलिए दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय स्वयं के लिए जीना भी उतना ही आवश्यक है। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, सफल वैवाहिक जीवन का आधार आपका जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार। बहनों, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं

खुशियों का मंदिर बनेगा या तनाव का केंद्र। बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। पति पत्नी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब दोनों एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सराहना करते हैं, तब संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। विश्वास वह डोर है जो पति पत्नी के रिश्ते को जीवन भर जोड़े रखती है। यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्ते की मजबूती भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कभी झूठ ना बोले, बातों को छिपाने की आदत ना रखे और हमेशा पारदर्शिता बनाए रखे। विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे टूटने में केवल कुछ क्षण ही पर्याप्त होते हैं। सम्मान विश्वास के बाद आता है प्रेम और स्नेह। बहनों, प्रेम केवल बड़े बड़े उपहार देने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में झलकता है। समय पर एक दूसरे का हालचाल पूछना, कठिन समय में साथ देना, थके होने पर सहयोग करना, जन्मदिन या विशेष अवसर याद रखना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये छोटे छोटे व्यवहार ही प्रेम को गहरा बनाते हैं। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए संवाद भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार रिश्तों में समस्याएं इसलिए नहीं आती कि कोई बड़ी गलती हुई है, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर देते हैं। खुलकर ईमानदारी और शांति के साथ बातचीत करना हर समस्या का समाधान हो सकता है। यदि कोई मतभेद हो भी जाए तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए, न कि क्रोध या कटु शब्दों के माध्यम से। बहनों, धैर्य और सहनशीलता भी सफल विवाह की पहचान है। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। यदि पति पत्नी हर छोटी गलती पर क्रोधित होने के बजाय धैर्य रखे और सुधार का अवसर दे, तो उनका रिश्ता अधिक मजबूत बनता है। क्षमा करना और भूल जाना भी एक सफल दाम्पत्य जीवन की महान कला है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया या मुझे आप पर गर्व है, जैसे शब्द रिश्तों में नई ऊर्जा भर देते हैं। आज समाज में वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का मुख्य कारण अहंकार, संवाद की कमी, असहिष्णुता और आपसी सम्मान का अभाव है। यदि पति पत्नी में मैं की जगह हम की भावना अपनाएं, तो अधिकांश समस्याएं स्वयं समाप्त हो सकती हैं। हमारे भारतीय संस्कार हमें सिखाते हैं कि परिवार प्रेम, त्याग, सेवा और सहयोग से चलता है। पति पत्नी यदि एक दूसरे के सुख दुख की सहभागी बने, कठिन समय में एक दूसरे का साथ थामे रखें और हर परिस्थिति में साथ निभाने का संकल्प लें, तो उनका जीवन वास्तव में सफल और सुखी बन सकता है। बहनों, सफल वैवाहिक जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, बल्कि प्रतिदिन किए छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों का फल होता है। तो चलिए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो प्रेम, सम्मान और विश्वास से परिपूर्ण हो।

बहनों, सावन का महीना अपने साथ हरियाली, खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश लेकर आता है। इसी पावन मास में मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि प्रकृति, हरियाली और समृद्धि का उत्सव भी है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने, भगवान शिव की पूजा करने और परिवार के साथ सात्विक एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने की विशेष परंपरा है। तो चलिए, आज खाना खजाना में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या स्पेशल कुछ ऐसी लजीज और पौष्टिक रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं पालक मक्का टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले आलू, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 छोटा चम्मच अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, सेकने के लिए घी या तेल जो भी आप चाहें। सभी सामग्री मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। छोटी छोटी टिक्कियां बनाएं, तवे पर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक सेकें, पुदीने की चटनी के साथ परोसे। तैयार है टेस्टी और पौष्टिक पालक की टिक्की। मीठे में बहनों चलिए बनाते हैं कैरेमल खीर। यूं तो आप सभी बहनें खीर आमतौर पे किसी भी उत्सव पे बनाती रहते हैं, आज हम बनाते हैं कैरेमल खीर। इसके लिए हमें चाहिए फुल फैट दूध 1 लीटर, 1 कटोरी कनकी वाले बारीक चावल जो हमने पहले से भिगो कर रखे हैं। दूध में चावल डालकर गलने तक पकाएं। आप एक अलग पैन में 1 कटोरी शक्कर, बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डालकर चलाते हुए कैरमल बना लें। जब आप देखें कि ये बिल्कुल

लाइट ब्राउन कलर का और लिक्विड फॉर्म में हो गया है, तभी गैस बंद कर दें। अब आप देखें कि यदि आपके दूध में चावल पक गए हैं तो आप इस कैरेमल को उस पर मिला दें, साथ ही कुछ सेके हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हों वो डाल दें। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दें। कुछ देर और चलाएं और गैस बंद करके रख दें। तैयार है स्वादिष्ट कैरेमल खीर। आप इसे ठंडी या गर्म दोनों ही तरीके से खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप महिला कार्यक्रम सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाए।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

जगन सिंह कुशवाहा की गए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल हुसैन खान बंदनबाजी और साथियों की गई ये कव्वाली।

इकबाल हुसैन खान और साथियों की गई एक कव्वाली के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदाबहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया अनामिका फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले का गाया हुआ है, जिसे हमने लिया कश्मीर की कली फिल्म से, एसएच बिहारी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: आज भोसले की आवाज़ में कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है। आप सुनेंगे अब प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। यह आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया।

0: मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।
1: आज तिरंगा यात्रा हम सब देश में निकाल रहे हैं, हर राज्यों में, राजधानी में आज सब तिरंगा यात्रा निकल रही है और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए। अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नजर न लगे।
0: गौरतलब है कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। राज्य को आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक राउंड ट्रिप पर 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। नई सेवाओं से प्रदेश की आंतरिक और अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। पुदुचेरी में आज पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन और लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली जा रही है। सुबह 6 बजे से लालबाग परिसर से शुरू हुई रैली में हजारों युवा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट टावर चौराहा और भंवर कुआं होते हुए राजीव गांधी चौराहे पहुंचेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय परिसर सोयत कला में पौधाकरण किया गया। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। और पन्ना में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्राचीन चंदेल कालीन महाराज सागर तालाब और परिसर का भ्रमण किया और कदम्ब के पौधे का रोपण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार

0: देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की

0: रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए गए इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद GT रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन

0: का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डो ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: हम आ गए हैं आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा लेकर और मैं हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी। बच्चों कैसे हैं आप? सभी एक साथ बोल पड़े, बहुत अच्छे दीदी। हमें पता है कि आप सभी कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की, है ना? बच्चों अगस्त का महीना देशभक्ति की भावना में डूबा हुआ होता है, क्योंकि बच्चों इसी अगस्त के महीने में ही तो हम अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाते हैं। बच्चों आज़ादी या कहें स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। सदियों से भारत के लोग अंग्रेजों की दास्तां और अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। खुली फिजा में सांस लेने को व्याकुल भारत में आज़ादी का बिगुल सन 1857 को बजा, पर किन्हीं कारणों से बच्चों हम गुलामी के बंधनों से मुक्त ना हो सके। पर बच्चों यह क्रांति की आग धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप लेने लगी और मातृभूमि पर मर मिटने को आतुर हजारों देशभक्तों ने क्रांति की इस मशाल को थाम कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराया। वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयत्नों की ही देन है कि 15 अगस्त सन 1947

1947 को हमारा देश आजाद हुआ। बच्चों, आजादी को पाने में हमने बहुत संघर्ष किया है और इतने सालों से हम ये पर्व मना रहे हैं, पर इस आजादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमारे नन्हे नौनिहाल यानी कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्या सोचते हैं आजादी को लेकर, कैसे मनाते हैं 15 अगस्त का ये त्योहार, तो आइए जानते हैं आप सभी दोस्तों के विचार आजादी के तरानों के साथ।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीहू शर्मा है और मैं 9th क्लास में हूँ।
1: पीहू, ये बताओ कि तुम्हें पता है कि आज कौन सा विशेष दिन है?
0: हाँ, आज 9 अगस्त है।
1: तो तुम्हें पता है 9 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
0: हाँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का आह्वान करते हुए कहा, करो या मरो। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। उसके बाद दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, इसीलिए हम राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और 15 अगस्त बहुत नजदीक है और हमने बहुत सारी तैयारी करी है।
1: बहुत अच्छी बात है पीहू।
0: और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आजादी के महत्वपूर्ण नारे बता रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। भगत सिंह ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
1: क्या बात है पीहू, बहुत ही अच्छे नारे आपने बताए हैं अपने दोस्तों को।
0: 15 अगस्त बहुत नजदीक है और उसी के विषय पे मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लहराता रहे तिरंगा प्यारा, भारत देश है सबसे न्यारा। केसरी देता वीरता का ज्ञान, सफेद बढ़ाता शांति का मन। हरा रंग हरियाली लाए, अशोक चक्र राह दिखाए। गर्व से इसमें नमन करे, भारत माँ का वंदन करे। ऊंचा रहे सदा इसका मान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान।
1: बहुत अच्छी कविता पीहू आपने सुनाई है।
2: मेरा नाम अथर शर्मा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारे स्कूल में ध्वज फहराते हैं, लड्डू मिलते हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, एक तो बुरा मत बोलो और एक बुरा मत सुनो और एक बुरा मत देखो। बुरा मत देखो का मतलब होता है अच्छा देखो, बुरा मत सुनो का मतलब होता है अच्छा सुनो। हमारी स्कूल में 15 अगस्त को पोयम होती है और उन सबको फूल चढ़ाते हैं जिन्होंने हमको बताया था।
3: हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिरा जोशी, मैं है ना KG 2 में पढ़ता हूँ। 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ लड्डू बटते हैं, मैं लड्डू खाता हूँ। उस दिन हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मैडम भाषण देती हैं, बच्चे कविताएं बोलते हैं, सब लोग देशभक्ति गान गाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के डांस होते हैं, झंडा वंदन होता है। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहन के बहुत डांस करते हैं, खूब खुशियाँ बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जय हिंद
4: बच्चों। अच्छा लगा ना सुनकर।

0: Hello friends, myself Reva Sharma. I am student of class 6. I like Independence Day. In our school, we are singing patriotic song and I love patriotic song. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Jaag utha insaan phir Bharat ko swarg banayega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega.
1: रेवा, आपने बहुत ही अच्छा सुंदर सा गीत गाया, लेकिन हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप जानती हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और उसके मायने क्या हैं?
0: हम इस दिन आज़ाद हुए थे. हमारे इंडिया को इस दिन आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से. मेरे स्कूल में भी बताया जाता है और मेरी मम्मा भी बताती है कि काफी तकलीफों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलवाई है. तो हमें इस आज़ादी को सुरक्षित रखना है. आज़ादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. इंडिपेंडेंस डे पे काफी स्कूल्स में फ्लैग होस्टी होती है. ये मुझे बहुत ही पसंद है. लेकिन जो मार्केट में फ्लैग मिलते हैं और जो कभी कभार हमें सड़कों पे गिरे हुए दिखते हैं, ये अपमान होता है हमारे फ्लैग का. तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए.
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पलक शर्मा है. मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ. अभी आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है. सभी लोग इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं. स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं. उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं. महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खूब मदद मिली और 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली. स्वतंत्रता के लिए किए गए कड़े संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को जड़ से मिटा दिया. चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या संस्कृति या परंपरा का हो, देश के आगे उसके लिए कुछ नहीं. यहाँ तक कि अरुणा, आसिफ अली, एनी बीसेंट, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी चूल्हा चौका छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है. इस खास दिन पर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद करते हैं. इन सब बलिदानों

के कारण हमें जो यह आज़ादी मिली है, हमें इसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और अपने स्वतंत्रता के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए और इसे दिलोजान से संजो कर रखना चाहिए।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बेटा, तुम अपना नाम बताओ।
0: मेरा नाम हाइफा खान है।
1: अच्छा हाइफा, ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
0: मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ प्रेरक कविताएं तथा हमारी महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको देशभक्ति कविता सुनाना चाहूँगी। यह धरती वीरों की धरती, यह भारत की शान है, इसकी रक्षा में जीवन देना हर भारतवासी का मान है। तिरंगे की आन रहे उसी, यही हमारा अभिमान है। देश पुकारे जब भी हमको, जीवन तक बलिदान है। ना झुकने देंगे भारत को, ना टूट देगा विश्वास कभी। एकता साहस और परिश्रम से बढ़ता रहेगा देश सभी। अब मैं आपको हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। यह प्रसंग भगत सिंह पर है। 23 वर्ष की आयु में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी वे बिल्कुल शांत रहे। फांसी से कुछ समय पहले वे पुस्तक पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। पुस्तक बंद करके वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और इकबाल जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको APJ अब्दुल कलाम का प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगी। एक बार किसी कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका जीवन सादगी, मेहनत और निरंतर सीखते रहने का उदाहरण है। उन्होंने युवाओं को हमेशा बड़े लक्ष्य रखने और उन्हें ईमानदारी से पूरा करने की प्रेरणा दी। इसी संदेश के साथ आइए हम सभी अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखें तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।
2: दोस्तों, मैं सावी कानुनगो और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चंद्र पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। जिस देश में है गंगा बहती, पावन पुनीत है सारा परिवेश, अनुपम संस्कृति सद्विचार फैलाता, देता मानवता संदेश, ये प्यारा भारत देश, ये प्यारा भारत देश। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पावन भूमि पर रहती हूँ जहाँ की सभ्यता संस्कृति सारी दुनिया के सामने एक मिसाल है। और यह तो आपको पता ही है दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है और स्वतंत्रता दिवस का एक अपना ही महत्व है। 15 अगस्त अपने राष्ट्र का पुनीत पर्व है। यह एक महिमामय तिथि है। इस दिन हम स्वतंत्र हुए और यह स्वतंत्रता अक्षुण बनी रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि दोस्तों हम अपनी आज़ादी के मायने को समझें। आज़ादी का सही अर्थ है नागरिक धर्म का पालन करते हुए इस तरह विकास करना कि किसी को नुकसान न पहुंचे। आज़ादी पा लेना ही काफी नहीं है दोस्तों, उसे बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। आज़ादी महज एक जश्न नहीं है, जिम्मेदारी और चुनौती भी है। हम सभी को यह प्रण करना है कि इस आने वाले पर्व को अत्यधिक उल्लास के साथ मनाएंगे और आज़ादी की अक्षुणता के लिए यह आवश्यक होगा कि हम पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर सहयोग और एकता में विश्वास करें।
3: दीदी, बहुत सारी बातें हो गई है, क्यों ना अब एक देशभक्ति का गीत सुनिया जाए।
4: चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, इस दिन की याद आते ही हमारा मन उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बच्चों, अब यह हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्र भारत के विकास के लिए सतत कार्यरत रहें, देश की प्रगति में सहयोग दें। हमें सदैव अच्छा कार्य करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। जितने हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उतने ही कर्तव्यों के प्रति भी रहें, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।

0: बच्चों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब आपसे अनुमति ली जाए। अगली बार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। नमस्ते, जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की। राज्य को आज से 4 नई हवाई सेवाएं मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर की 3 बजे हैं। हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। युवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 5:02 पर। 5:33 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर, जिसमें 7:30 से 8 बजे के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा खरीफ की फसलों में कीट रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर हरदयाल वर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सुनिएगा रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में डगर विकास की। ये कार्यक्रम होगा रात 8:15। आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगा। विषय होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं रात 8:30। इसके अलावा आपकी फरमाइश कार्यक्रम में रात 9:30 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में रात

इस पीछे सुनिएगा सात्विक मोहन का कर्नाटक गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारे प्रसारण थोड़ी देर के लिए बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। डीटीएच का प्रसारण आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं गोधनलाल कुशवाहा और साथियों का गाया वर्षा गीत।

अभी आप सुगम संगीत, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल हुसैन खान बंदनवाजी और साथियों की गाई ये कव्वाली।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे इकबाल हुसैन खान बंधनबाजी और साथियों की गाई ये कव्वाली। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। प्रदेश भर में भी आज से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। विभिन्न जिलों में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

सिंधियत जी सुरहाण ॿुधण वारे सभी रेडियो श्रोताउनि खे कविता चांदवानीअ जी सिक भरी नमस्कार। जय झूलेलाल दोस्तों। दोस्तों, युवा थियण सिर्फ़ हिकु उमिरि ई कान्हे, हिकु सोच आहे, हिकु जज़्बो आहे। ऐं इन ई सोच ऐं इन ई जज़्बे खे सलाम करण लाइ हर साल 12 अगस्त खे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जे रूप में मनायो वेंदो आहे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हिन ॾींहं जी शुरूआत इन लाइ कई दुनिया भर जे युवाउनि खे आवाज़ मिली सघे, उन्हनि जे आवाज़ खे मंच मिली सघे, उहे पंहिंजी परेशानियुनि खे खुली करे ॻाल्हाए सघनि। संयुक्त राष्ट्र महासभा पारां December 1999 में ही प्रस्ताव पारित कयो वियो। पहिरीं बार 12 अगस्त 2000 में ही ॾींहुं मनायो वियो। दोस्तों, हिन ॾींहं खे मनाइण जो सिर्फ़ हिकु ई उद्देश्य आहे त जेके पूरे दुनिया जा युवा आहिनि, उहे पंहिंजूं परेशानियूं, पंहिंजी पढ़ाई, उन्हनि जो जेको स्वास्थ्य आहे, उन्हनि जे समाज में चर्चा थी सघे, उन्हनि जो विकास थी सघे। दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ते हिकु थीम हूंदी आहे। 2026 जी थीम आहे विभिन्न संदर्भ साझा आकांक्षाएं। छा तो सिखारे ही त भले ही पूरी दुनिया जा युवा अलग आहिनि,

0: उन जो परिस्थितियूं अलॻि आहिनि, पर सभिनि जो लक्ष्य हिकु ई आहे त उन्हनि जो भविष्य सुंदर हुजे, हिकु बहितर भविष्य ठही सघे। त इन भविष्य लाइ ई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मल्हाइण जी कोशिशि कई वई आहे। दोस्तो, असां देश में जिते वञूं था अॼुकल्ह हिकु इहो ई स्लोगन था ॿुधूं, हर घर तिरंगा है। दोस्तो, इहो स्लोगन ॿुधी जेका देश में देशभक्तिअ जे प्रति उपासना थी अचे, त अचो इन अभियान छा आहे, इन अभियान जे बारे में जेको जोर शोर सां पूरे देश में अभियान पियो हले, इन अभियान जे बारे में अॼु असांखे वधीक ॼाण ॾियण लाइ स्टूडियो में मौजूदु आहिनि शिक्षक कन्हैया लाल मूलचंदानी जी, जेके असांखे हर घर तिरंगा अभियान जे बारे में ॼाण ॾींदा। ॿुधंदासीं।
1: हर घर तिरंगा अभियान, इहो अभियान भारत सरकार पारां देश जी आज़ादीअ जे 75 साल पूरा थियण ते अमृत महोत्सव जे तहत शुरू कयो वियो हिकु ऐतिहासिक जन आंदोलन आहे, जंहिंजो मक़सदु हर भारतवासीअ जे दिलि में देशभक्तिअ जी भावना पैदा करणु ऐं क़ौमी तिरंगे लाइ मान सम्मान वधाइण आहे। भारत सरकार जे संस्कृति मंत्रालय पारां इन अभियान जी रूपरेखा तयारु कई वई हुई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीअ बि देशवासियुनि खे हिन मुहिम सां जुड़ण जी अपील कई आहे। पहिरीं भारत में झंडो फहिराइण जा नियम यानि फ्लैग कोड ॾाढा सख़्त हुआ, जंहिंजे करे आम माण्हू सिर्फ़ ख़ासि राष्ट्रीय ॾींहनि जीअं त 15 अगस्त ऐं 26 जनवरीअ ते या वरी कुझु सरकारी इमारतुनि ते ई झंडो ॾिसी सघंदा हुआ। सरकार इन नियमनि में ढिल ॾिनी, जीअं त देश जो हर नागरिक पंहिंजे राष्ट्र ध्वज खे सहजता सां घर ते फहिराए सघे ऐं संदसि नातो तिरंगे सां वधीक मज़बूत थी सघे। हिन अभियान देश जे आम माण्हुनि खे तिरंगे सां भावनात्मक रूप सां जोड़े छॾियो आहे। इन अभियान जो ख़ासि मक़सदु देशवासियुनि में देश प्रेम ऐं एकता जी भावना खे मज़बूत करणु आहे। तिरंगो असांजे देश जी आज़ादी, मान ऐं शान जो प्रतीक आहे। जॾहिं बि केरु पंहिंजे घर ते तिरंगो फहिराईंदो त उहो पंहिंजे देश जे शहीदनि ऐं वीरनि जे बलिदान खे यादि कराईंदो। तिरंगा अभियान जे मुख्य लक्ष्य जी ॻाल्हि कयूं त उहो राष्ट्रवाद जी भावना वधाइण बि आहे। माण्हू सिर्फ़ लाज़मी तौर ते न, पर सचीअ भावना सां देश प्रेमी बणजनि। देश जी आज़ादीअ लाइ जिन वीरनि पंहिंजो बलिदान ॾिनो, तिरंगे खे ॾिसी करे उन्हनि खे यादि करणु ऐं नमन करणु शहीदनि खे सची श्रद्धांजलि थींदी। भारत में घणेई धर्म, ॿोलियूं ऐं जातियूं आहिनि। तिरंगो असांखे हिकु सूत्र में ॿधी करे सेखारे थो त असीं सभई धर्म, जाति ऐं ऊच नीच जो भेद विसारे बसि हिकिड़ा भारतवासी आहियूं। तिरंगे जे टिनि रंगनि जो महत्व, असांखे संदनि टिनि रंगनि जी ख़ासियत ऐं संदेश खे सम्झणु तमामु ज़रूरी आहे। केसरिया यानि नारंगी रंग, इहो रंग साहस ऐं बलिदान जी निशानी आहे। इहो असांखे शहीदनि जी क़ुर्बानियूं यादि कराए थो। अछो रंग, इहो रंग अमन, शांति ऐं सचाईअ जो सूचक आहे। साओ रंग, इहो रंग देश जी खु़शहाली, हरियाली ऐं तरक़ी ते इशारो करे थो। अशोक चक्र, विच में बणियल नीरे रंग जो चक्र धर्म चक्र आहे। हिन अशोक चक्र में 24 लीकूं हूंदियूं आहिनि। इहो सारनाथ में मौजूदु सम्राट अशोक जे सिंह स्तंभ मां खयो वियो आहे, जेको असांखे हमेशह गतिशीलता ऐं तरक़ीअ जी राह ते अॻिते वधण जी प्रेरणा ॾिए थो। 24 लीका माना 24 कलाक, पंहिंजे कर्तव्य जो पालन करणु, जीवन जा 24 मुख्य गुण जीअं त संयम, साधना, आरोग्य, शांति, त्याग, तप, चरित्र, शेवा, भक्ति, खिम्या, प्रेम ऐं राष्ट्रीय एकता जो संदेश ॾियनि था।

0: हिन अभियान में जन भागीदारी ऐं सभिनी जो उत्साह ॾिसण जहिड़ो आहे। कश्मीर खां वठी कन्याकुमारीअ ताईं, नंढे ॿार तोड़े वॾनि ताईं, सभिनी इन में जोशो खरोश सां हिसो वठी देश में हिकु नई मिसाल क़ाइमु कई आहे। स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में ॿारनि पारां तिरंगा रैलियूं कढी नगरवासियुनि खे सुजाॻ कयो वेंदो आहे। सोशल मीडिया ते माण्हू तिरंगे सां गॾु डीपी रखनि था या वरी झंडे सां गॾु सेल्फियूं हर घर तिरंगा वेबसाइट ते अपलोड पिणु कनि था। पोस्ट ऑफिस या राशन जे दुकाननि ते घटि अघ में तिरंगा मिली वेंदा आहिनि, जीअं वध में वधि माण्हू हिन उत्सव जो हिसो बणिजी सघनि। तिरंगे जी शान में नागरिकनि खे कुझु फ़र्ज़ ऐं नियमनि जो पालण बि करणु घुरिजे। तिरंगो फहिराइण वक़्तु असांखे भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो आदर करणु तमामु ज़रूरी आहे, जीअं त झंडो कॾहिं बि मेरो या फाटल न हुजे। तिरंगे खे कॾहिं बि ज़मीन ते न रखिजे। जॾहिं बि झंडो लाहे रखिणो हुजे त अदब ऐं पूरे मान मर्यादा सां हुन खे वेढ़े सवे नमूने अलमारी या कबट में साफ़ जॻह ते रखणु घुरिजे। असांजे लाइ फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे त आंध्र प्रदेश जे हिकु महान देशभक्त ऐं स्वतंत्रता सेनानी तिरंगे जी डिज़ाइन ठाही हुई। उहो शख़्स हो पिंगली वेंकैया। देशभक्त पिंगली वेंकैया घणो अभ्यास करे सन 1921 में झंडे जो शुरूआती नमूनो तयारु कयो। पोइ उन में महात्मा गांधी ऐं ॿियनि अॻवाननि जी सलाह ऐं मंजूरीअ सां कुझु बदिलाउ कया विया। आख़िरकार 22 जुलाई 1947 ते संविधान सभा पारां हिन डिज़ाइन खे आज़ाद भारत जे क़ौमी झंडे तौरु मंज़ूर कयो वियो। हर घर तिरंगा अभियान महज़ हिकु सरकारी प्रोग्राम कोन्हे, पर इहो हिकु भावुक आंदोलन बणिजी चुको आहे। इहो असांखे अहसासु ॾियारे थो त असांजी आज़ादी केतिरी न क़ीमती आहे। अचो त अॼु गॾिजी हिकु प्रण कयूं त सभु गॾिजी करे हर घर तिरंगा अभियान खे सफल बणायूं ऐं पंहिंजे देश जी तरक़ीअ ऐं एकता लाइ हमेशह वफ़ादार रहूं। जय हिंद, जय भारत।
1: दोस्तों, इन तमामु सुहिणी ॼाण खां पोइ वक़्तु आहे हिकु सुहिणे गीत जो। तूं आहीं साहिब, मोहम्मद रफ़ी जन जो ॻायल, राम पंजवानी जन जी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं हीउ सुहिणो गीतु।

दोस्तों विश्व स्टील पेन दिवस। दोस्तों हर साल 11 अगस्त स्टील पेन के सम्मानित करण लाइ ही विश्व स्टील पेन दिवस मल्हायो वेंदो आहे। 20 शताब्दीअ में त्रिनिदाद ऐं टोबैगो में हिकु अनोखे संगीत जे वाद्य यंत्र जो आविष्कार थियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा स्टील पेन के सांस्कृतिक ऐं ऐतिहासिक महत्व के मान्यता ॾियण लाइ ही ॾींहं खे मल्हाइण जी घोषणा कई वई। दोस्तों 9 अगस्त इतिहास जे पन्नन में लिखल एक अहिड़ी तारीख आहे जेके असांजे वीर सपूतन जे बलिदान लाइ हमेशा याद कई वेंदी। दोस्तों काकोरी कांड उत्तर प्रदेश जे लखनऊ जे पासे में काकोरी गांव जे पासे 9 अगस्त 1925 में भारतीय क्रांतिकारियुनि पारां एक ऐतिहासिक ट्रेन डकैती हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पारां हिन डकैतीअ जो मेन उद्देश्य ब्रिटिश सरकार जे खजाने मां हथियार वठण ऐं स्वतंत्रता आंदोलन लाइ पैसे खे लूटण हो। दोस्तों हिन ऐतिहासिक ट्रेन घटना में असांजा तमामु वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल जण तमाम नेताउनि खे 1927 में फांसी ॾिनी वई। दोस्तों जीअं तव्हांखे ॼाण हूंदी मींहं जो मौसमु आहे, सुहिणो सुहिणो मौसमु आहे मींहं, हालांकि मींहुं वधीक पए कोन थो जेतिरो पवणो खपे, पर सावण जो महीनो चालू आहे, मींहं जो मौसमु आहे, त अचो असां ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत बादल आया। मोहम्मद रफ़ी जन जो ॻायल, किशन राही जन जो लिखियलु, राम पंजवानी जन जी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत।

दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त मनायो वेंदो आहे। हे ॾींहुं दुनिया भर जे आदिवासी समाज जे अधिकार उन्हनि जी सांस्कृतिक भाषा परंपराउनि जे प्रति सुजाॻीअ लाइ ही ॾींहं खे मल्हायो वेंदो आहे। 1994 में पहिरीं बार संयुक्त राष्ट्र हिन ॾींहं खे मल्हाइण जी घोषणा कई। दोस्तो 15 अगस्त सिर्फ़ हिकु तारीख़ कोन्हे, 140 करोड़ हिंदुस्तानियुनि जे आज़ादीअ जो ॾींहुं आहे। 1947 में देश खे लॻभॻि 200 सालनि जे ब्रिटिश शासन खां पोइ आज़ादी मिली। भारत देश हिकु आज़ादु देश ठहियो। 15 अगस्त देश जो हिकु राष्ट्रीय ॾिणु आहे। देश जे पहिरें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन देश जे लाल किले ते पहिरीं बार तिरंगो झंडो फहिरायो। हीअ ॾींहुं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जहिड़नि हज़ारनि स्वतंत्रता सेनानियुनि जे बलिदान खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते देश भर जे स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी सभिनि ऑफिसुनि में ध्वजारोपण थींदो आहे, झंडो फहिरायो वेंदो आहे ऐं देश में सरकारी छुट्टी थींदी आहे। दोस्तो तव्हां सभिनि खे बि देश जे आज़ादीअ जूं लख लख वाधायूं। भारत माता की जय। दोस्तो इन देश जे रंगियल में, आज़ादीअ जे रंगियल में ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत, असांजो प्यारो हिंदुस्तान। कला हजारी, कमला केसवानी, गुरदास मलजन जो गायल ऐं गौरधन भारती जन जो लिखियलु सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तो हिन गीत सां ही अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो आहे। उमेदु आहे ऐं विश्वास आहे त तव्हांखे हीउ प्रोग्राम वणियो हूंदो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई ख़बर सां। जेसिताईं तव्हां पंहिंजा राया, पंहिंजा सुझाव आकाशवाणीअ जे फेसबुक पेज ते मोकिले सघो था। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल सभ जो।

0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 25वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा शब्द के अर्थ को प्रकट या प्रकाशित होने के रहस्य को जान गए हैं और ये शिक्षा उन्हें विदुषी वेश्या हीरा ने दी है। राजा उज्जैनी वापस आ गए हैं, वे महालय न जाकर महाकाल के समक्ष नत हैं। अब आगे

0: अवंती की ओर चल पड़े राजा भर्तृहरि। नगर प्रवेश के लिए उन्होंने महावन का मार्ग चुना। यह अपेक्षाकृत निर्जन मार्ग है, साधु संन्यासी ही उधर से आते जाते हैं। वन में 84 शिवलिंग और अष्ट भैरव का वास है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 गणेश हैं, 24 देवियां भैरवियां हैं। अतः यहां न तो कोई वेश पर ध्यान देता है और न रूप पर। लोक श्रुति के अनुसार महावन में देव देवियां मानवस्य में विचरण करते रहते हैं, अतः कोई किसी को टोकता नहीं। क्षिप्रा पर पहुंच भर्तृहरि ने देर तक स्नान किया। उसके पश्चात मंदिर में महाकाल के सामने नेत्र बंद कर नच्छिर खड़े हो गए। ज्योतिर्लिंग पर दृष्टि पड़ते ही पलकें स्वयं मुंद गईं, मन शरणागत हुआ और कामना विस्मृत। पुजारी महाराज को पहचान कर कहता है, महादेवी को सूचना पहुंचाओ कि महाराज महाकाल के मंदिर में हैं।
1: स्वामिनी, महाराज के आ जाने की सूचना है, महाकाल की अर्चना में हैं वे।
2: वैसे का वहीं पहुंचकर हम महाराज का स्वागत करेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
1: किंतु महादेवी,
2: तुमने सुना नहीं वैसिका, हम सोचते हैं कि महाकाल मंदिर पर ही उनका स्वागत करें, उन्हें प्रसन्नता होगी।
1: स्वामिनी, मेरे मत से आपको महाराज के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
2: वैसिका, हमारी कृष्टता मानकर वो रूठ जाएंगे।
1: रूठों को मनाया भी जाता है, वो अपने कक्ष में पहुंचे तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं वहां से अभी परिचर परिचारिकाओं को हटा देती हूँ। महाराज किसी को भी आवाज दें, सामने आप ही पहुंचेंगी। वो जो भी मांगे आप ही प्रस्तुत करें।

0: करेंगी।
1: हम समझ नहीं पा रहे वैसिका।
2: इतने वर्षों से महारानी हैं आप, एक दिन दासी का दायित्व वहन कर लीजिए। संकोच न करें, महारानी हो या दासी, स्त्री ही रहेगी वो।
3: जीवक देवी वैसिका की प्रतीक्षा में है।
2: कहो बंधु, महामात्य की क्या आज्ञा है?
3: नरेश महाकाल के मंदिर में है, महामात्य वहां पहुंच रहे हैं। मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि महादेवी
2: महादेवी यहीं भेंट करेंगी महाराज से।
3: किंतु महामात्य ने तो कहा है।
2: ये महारानी ने कहा है, महामात्य को बता देना, फिर उनकी जो भी आज्ञा हो।
4: महाराज के आगमन का समाचार उज्जैनी के आकाश पर बिजली के आवेग सा कौंध गया। महामात्य तो महाकाल के प्रांगण में त्वरित गति से पहुंचे ही। अन्य राज्याधिकारी, आमात्य और बलाधिकृत भी वहां जुटने लगे। देखते देखते अपार जन समूह मंदिर में एकत्र हो गया। उत्सुकता, आश्चर्य, जिज्ञासा, अनिश्चय से अपने नरेश पर एक टक दृष्टि लगाए देखता हुआ जन समूह और ब्राह्मण वेशधारी भर्तहरी अविचल, निष्कंप, ध्यान मग्न महाकाल की उपासना में लीन, एक पवित्र मौन प्रांगण में पसरा हुआ।
5: महामहिम धर्मोपाध्याय महोदय, प्रवास काल में नटराज के वाद्यनाथ से उत्पन्न शब्द के रूप, प्रभाव और प्रतीत के संयोजन का प्रसाद है ये ग्रंथ, जिसे मैं महाकाल के चरणों में समर्पित करता हूं। विद्वत समाज इस पर विचार करे, इसे वाक्यपदीयम कह लीजिए अथवा जो भी विद्वत जन उचित समझे। आदरणीय महामात्य,
6: महालय की ओर पधारे महाराज। सब कहूंगा।
4: वो चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। विद्वत सभा से रात के तीसरे पहर में लौटकर भर्तहरि कोई सूत्र गुनगुना रहे थे। चंपा वस्त्र बदलने में उनकी सहायता कर रही थी।
5: महादेवी कहाँ हैं चंपा?
1: अपने कक्ष में स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हैं।
5: चंपा
1: जी,
5: तुमने कभी कुछ मांगा नहीं हमसे। चंपा, हम कुछ पूछ रहे हैं, तुमने हमसे कभी कुछ चाहा नहीं।
1: दासी को बिना मांगे ही स्वामी की अकल्पनीय कृपा प्राप्त हुई है।
5: हमारी ओर देखो चंपा, क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं चाहिए?
1: हाँ देव, कुछ नहीं।
5: चंपा, तुमने मेरी संतुष्टि के लिए सदैव ही अपनी इच्छाओं का होम किया है ना?
1: वही तो दासी का धर्म है स्वामी।
5: चंपा, मेरी ओर देखो चंपा, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, केवल दो प्रश्न। तुम असत्य नहीं बोलोगी ये मैं जानता हूं, किंतु ये भी चाहता हूं कि चुप रहकर इन प्रश्नों की गंभीरता मत टालना। क्या हुआ चंपा, तुम्हारे माथे पर श्वेत कण क्यों छलक रहे हैं?
1: मैं आपके चरणों की धूल होने के योग्य भी नहीं, अपनी स्वामिनी की इच्छा मात्र हूं। मेरी प्रार्थना है कि जो भी पूछना हो वो स्वामिनी ही से ही पूछें। आपसे सत्य नहीं कहा तो मेरे लिए मरण तुल्य होगा। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, चिंता ये है कि तब कुमार को दूध कौन पिलाएगा? स्वामिनी को तो दूध उतरता ही नहीं।
5: मेरा अनुमान सत्य निकला, कुमार को जन्म देने वाली माता तुम हो। तुम चंपा, एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया चंपा, दूसरा ये कि
1: स्वामिनी के विषय में कोई प्रश्न ना करे देव। मैंने स्वामी से अब तो कुछ नहीं मांगा, बस इतनी कृपा मेरी याचक छोली में डाल दीजिए।
5: अब कुछ नहीं पूछूंगा, शांत हो जाओ चंपा, अब कुछ नहीं पूछूंगा। तुम जानती हो कि पिंगला के प्रति अतीव राग है, प्रबल आकर्षण है, उसके प्रति संदेह का जो बीज मेरे

0: मन में पड़ा है वो भीतर ही भीतर बैठा आंखें झपकाता रहता है। विकलता बढ़कर पलायन के लिए प्रेरित करती है। अनुराग से, आकर्षण से बार बार भागता हूं और बार बार संबंधों की उसी भूमि पर लौटता हूं। चंपा, तुम कभी पिंगला को ध्यान से देखना, उसका लावण्य मुरझाता जा रहा है। पाटल जैसे कपोलों की त्वचा में संकुचन की रेखाएं आ रही हैं। मैंने देखा था कि एक दिन मेरे द्वारा चुम्बन लिए जाने पर उसके माथे पर उलझन सी आई, आंखों में एक अस्वीकार जैसा कुछ था। चंपा, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया।
1: देव,
0: समय नहीं बीता, हम ही बीत रहे हैं।
1: देव, मद्यपान यही ले आऊं?
0: चारों ओर मद ही मद है, राजमद, धनमद, यशमद। अभी अभी मैं यश के मद में तैरता हुआ पहुंचा हूं। कहीं पांव रखता था तो कहीं पड़ते थे। मदिरा का मद उसके सामने नगण्य है चंपा, फिर भी मदिरा ले आओ।
1: जी देव।
0: संभव है ये यश के मद से मुझे त्राण दे, या फिर तुम्हें उससे सेवा की संतुष्टि मिल सके। और मदिरा यहां रखकर तुम सोने चली जाना चंपा।
1: जी देव।
0: मुझे दर्शन दो गुरु, दर्शन दो, अपनी शरण में ले लो मुझे। देख देख, समझ लिया मैंने ये संसार स्वार्थ के ताने बाने का भ्रमजाल है सब ये गुरु। मैं और मेरे की माया में फंसा हुआ मैं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ नाथ। अलग अलग, गोरख गोरख, अलग अलग, गोरख गोरख।
1: कोई आ गया स्वामी?
0: ए? चंपा, तुम रात भर द्वार पर थी क्या?
1: महाराज कुछ कह रहे थे।
0: कुछ कहा मैंने? स्वप्न में कुछ कहा होगा।
1: सुना है भोर का स्वप्न सच होता है देव।
0: महाकाल की शंख ध्वनि सुनाई दे रही है चंपा। वज्र भैरव जाने कहां होंगे, उन्होंने बहुत दिनों से सुधि नहीं ली। मनुष्य कैसे कैसे भ्रमों के साथ जीता है। तुम जो संदेह रहे थे वो है अस्तित्व ही, और जो संशय के वृत्त में है वो शासिका स्वामिनी है। और मैं भी कहां सत्य को स्वीकार कर पाता हूं। संकल्प लेकर गेह से भागता हूं और देह की कामना बनकर लौट आता हूं। कोई बात तो है चंपा, जो इन सुख साधनों के बीच भी एक विकलता मेरे आसपास सांस लेती रहती है। लगता है, लगता है, ओह जाने क्या क्या लगता है। जाओ चंपा, जाओ अपनी स्वामिनी के पास जाओ।
1: जो आज्ञा देव।
0: उनसे कह दो कि अब वो निर्वाह की यातना से स्वयं को मुक्त माने।

0: भर्तृहरि की रुचि राजकार्य में कम होती जा रही है। क्रमशः वो पूर्णतः उदासीन और निरपेक्ष हो गए हैं। राजकीय कार्य अब महामात्य की ओर ही हैं। समय समय पर वो नरेश से मिलने आते, किंतु वहां उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाते। नरेश गोपनीय मंत्रणाओं से भी अलग रहते हैं। इनमें सेनापति के अतिरिक्त वैसिका को सम्मिलित किया जाता। कुमार विक्रम को बार बार अवंती आना पड़ता, कभी महामात्य के बुलावे पर तो कभी स्वयं ही। उनकी उद्दंडता अब शांत है। महाराज की उपस्थिति और महामात्य की योग्यता से सब सुचारू चल रहा है, या फिर महाकाल ने अवंती का संचालन ले लिया है।
1: धृष्टता क्षमा करे नरेश, मुझे विषाद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप प्रजा के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं।

0: ग्रीष्म और पावस के पश्चात इस बार शरदोत्सव में भी जनता आपके दर्शनों से वंचित रह गई है।
1: महामात्य, प्रजा को चाहिए कि वो अयोग्य राजा को पदच्युत करके अपना दूसरा राजा चुन ले। ये जनता का जन्म सिद्ध अधिकार सदा से रहा है।
0: ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये निर्णय अकस्मात क्यों?
1: अकस्मात नहीं आर्य, न जाने कब से द्वंद्वग्रस्त हूं। जीवन को बहुत निकट से देखा और उसे विश्लेषित किया, सत्य को समझने का प्रयास किया, भटका, जहां से चलना शुरू किया वहीं लौटकर आ भी गया। जाने दें, पूज्य पिता के समय से ही आप अवंती राज परिवार के शुभ चेता और राज्य के संकट मोचक रहे हैं। आपके पुत्रवत नरेश भर्तृहरि में शासन की ना तो इच्छा ही शेष है, ना सामर्थ्य बची है।
0: राजन,
1: कृपया स्वीकार करने दीजिए मुझे। अब तक भर्तृहरि किस तरह और कैसे इन भवनों, इन अट्टालिकाओं के अंधेरों से बंधा रहा, अब प्रकाश मुझे बुला रहा है। प्रजानम विनयात दानात रक्षणात भरणादपि का दायित्व मुझे बंधन लगता है। गुरु के दर्शन और आज्ञा की प्रतीक्षा है मुझे।
0: तो क्या राजा भर्तृहरि योगी सन्यासी होना चाहते हैं?
1: मुझे नहीं पता महामात्य, नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं बंधन, विकलता, कर्तव्यों के पाश, भ्रम जाल से मुक्त होना चाहता हूं महामात्य, जिनका भय हर क्षण मेरा पीछा नहीं छोड़ता। आर्य, आपने भी तो देखा है वज्र भैरव को, मैंने उन्हें गाते सुना है, कनक कामनी त्यागे दोई, सो जोगे स्वर निर्भय होई। योगी होना निर्भय होना है, जन्म से, यश अपयश से, आस और त्रास से। जिस धरा को सैकड़ों राजा अपनी अपनी मानकर मर गए, परंतु जो किसी ने भी नहीं भोगी, ऐसी पृथ्वी का राजा बनने का क्या अभिमान। हास्यास्पद तो यही है कि उस भू के लघुत्तर अंश को भी पाकर लोग स्वयं के भूपति होने का अभिमान पाल लेते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी महामात्य।
0: महाराज, फिर विचार करें, विचार करें। कनक श्रृंगा, उज्जैनी और अवंती की गरिमा और यश का, महादेवी पिंगला और अबोध कुमार के भविष्य का, उस कालातीत साहित्य अवदान का जो मानव जाति को आपने दिया है, सोचे सोचे कि क्या आपका निर्णय समयोचित और समुचित है। कर्मभूमि से पलायन यूं भी कायरता कही गई है महाराज।
1: आर्य, अब सहा नहीं जाता, मेरे लिए दो ही मार्ग अब शेष हो रहे हैं। आत्मग्लानी में मृत्यु का वरण करूं, अथवा गुरु गोरखनाथ की कृपा पाकर संसार को मृत्यु के भय और कष्टों से उबारने का प्रयत्न करूं। आपके अनेक उपकार हैं मुझ पर, अवसर मिला तो अपने अपराध के लिए सभी से क्षमा मांग लूंगा। पिंगला, चंपा, शची, चारुमित्रा से भी। भाग्यहीना वयसिका को क्या कहूं, जिसका दुर्भाग्य इस महालय के लिए महौषधि बन गया। अब राज्य को जैसे भी संभाले आप।
0: गुरु गोरखनाथ को आप कहां खोजेंगे?
1: जहां भी वो हो, वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
0: कामरूप कहां है?
1: सुना जाता है कि ब्रह्मनद और कदलीवन के बीच कहीं है।
0: ओह, तो मेरा भी एक आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा राजन। आपकी यात्रा में जीवक आपके साथ रहेगा। गंगा तट पर आपको बंगदेश के लिए नौकाएं मिलेंगी, वहां जाकर राजकुमारी मैनावती से भेंट कर लें। मैनावती निश्चित रूप से कामरूप का मार्ग जानती होंगी।
1: जीवक आपका विश्वस्त अनुचर और रक्षक है महामात्य, उसकी अनुपस्थिति में आप आरक्षित नहीं हो जाएंगे।

प्राणन तक रोग से बच गया हूं नरेश। पता नहीं कि त्रिलोचन की औषधियों से जीवन मिला या फिर वैसिका की सुश्रुषा ने बचाया। क्या पता दोनों ही माध्यम रहे हों। किंतु महाकाल की इच्छा नहीं होती तो ये भी क्या कर लेते। आपने ठीक ही कहा, जीवक अत्यंत विश्वसनीय है अपनी स्वामी भक्ति के कारण। इसलिए मैं उसे आपके साथ भेज रहा हूं। वो मैनावती के यहां तक आपको पहुंचाकर लौट आएगा। महाराज, फिर आप होंगे और आपकी खोज।

0: यहां राजसेवक दो अश्वों को लेकर उपस्थित है महाराज।
1: ठीक है जीवक, हमें शीघ्र प्रस्थान करना है।
2: सिंह द्वार के सावधान रक्षकों ने राजा भर्तृहरि को तीव्र गति से द्वार के बाहर जाते देखा। उनके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे और न ही राज चिन्ह द्योतक कोई अन्य संकेत। जीवक भी साधारण वेश में, कमर से बंधी हुई तलवार अवश्य उसके पास थी और थीं सावधान चौकस निगाहें। उज्जैनी से बाहर निकलकर भर्तृहरि घूमे और उन्होंने धवल अट्टालिकाओं और स्वर्ण कलशों को प्रणाम किया और चल पड़े अपनी अबूझ अनिश्चित यात्रा पर गुरु गोरखनाथ की खोज में पूर्व दिशा की ओर।
0: महाराज, उज्जैनी से हम दूर आ गए हैं।
1: हाँ जीवक, उज्जैनी पीछे छूट गई है। अब मैं राजा नहीं हूं और ना ही तुम सेवक। बंगाल के पाल राज्य में पहुंचने तक तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मार्ग दुष्कर और सुदीर्घ है और हमें चलते ही जाना है।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: थल और जल मार्गों से चलते चलते अंततः राजा भर्तृहरि पाल राज्य के राजद्वार तक जा पहुंचे, जहां भर्तृहरि ने जीवक को विदा किया।
1: जीवक और नहीं, यहां से तुम उज्जैनी लौट जाओ। अब तक के साथ के लिए तुम्हारा धन्यवाद। महामात्य को बताना कि तुमने पूरी सुरक्षा के साथ भर्तृहरि को उसकी बहन मैनावती के राज्य की सीमा तक पहुंचा दिया है।
0: महाराज, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके किसी काम आ सका। प्रणाम महाराज।
2: मैनावती को अनुज के आगमन की पूर्व सूचना मिल गई थी। उसने राजा भर्तृहरि का उल्लासपूर्वक स्वागत किया और पाल राज्य इस अवसर पर रंगारंग उत्सवों में डूब गया। उत्सव दिन रात चलते रहे। एक दिन भाई बहन को वार्तालाप का अवसर मिला।
3: तो तुम्हारी यात्रा कामरूप के लिए है?
1: हाँ दीदी।
3: निश्चित और अटल?
1: हाँ।
3: अवंती किसके भरोसे छोड़ दी है?
1: महाकाल और महामात्य उसकी देखभाल करेंगे दीदी।
3: कामरूप जानने का उद्देश्य?
1: गुरु गोरखनाथ।
3: गुरु गोरखनाथ ने बुलाया है?
1: नहीं, मुझे स्वयं गुरु तक पहुंचना है। वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
3: वज्र भैरव कहाँ है?
1: तब के बाद भेंट नहीं हुई उनसे। वो यकायक आते हैं और जाने कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ होंगे।
3: अनुज, कामना की उमंग भूमि है कामरूप। भगवान शिव का तप भंग करने के लिए कामदेव ने अपनी माया वहीं रची थी। शिव के तेज से भस्म हुए काम की पत्नी रति को उन्होंने वही काम को अनंग होने का वर दिया था।
1: इस अनुश्रुत से मैं परिचित हूं दीदी।
3: काम देश में संयम

0: विवेक, अनुशासन, सभी कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है भैया। इसीलिए उस भूमि पर तप और योग की परीक्षा होती है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी भी वहां स्त्री की कामना से झुलसने लगते हैं। वहां मत जा रहे अनुज। वहां की स्त्रियां सर्वाधिक मायावी हैं। गुरु ने बताया है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ भी कामरूप पहुंचकर इसी माया जाल में बंदी होकर तप और योग को बिसरा बैठे थे। उन्हें गोरखनाथ ही बचाकर लाए थे।
1: मैंने ये भी सुन रखा है।
0: इसलिए मेरा कहना मान। उधर मत जा रहे अनुज। उज्जैनी नहीं लौटना चाहता तो फिर यहीं रुक। तुझ पर यदि गुरु की इतनी कृपा है तो मेरा विश्वास है कि वो भी तेरे लिए सोच रहे होंगे। वो तेरी श्रद्धा और समर्पण को समझेंगे और अवश्य मिलेंगे।
1: अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा बहन, और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैंने योग के मार्ग को ही चुन लिया है बहन, योग का मार्ग।
0: जैसी आदिनाथ की इच्छा, तू जा। किंतु वहां पहुंचकर गुरु गोरखनाथ तक कैसे पहुंचेगा तू? मैं तेरी किंचित सहायता कर सकती हूं। ब्रह्मनद के पवित्र जल को छू रहे पर्वत की एक गुफा में एक सिद्ध तांत्रिक निवास करते हैं। वही देंगे तुझे गुरु गोरखनाथ का पता। तुम्हें वहां तक नखला मेखला पहुंचा देंगी, केवल वहीं तक। दूर से पर्वत दिखाकर वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। किंतु सावधान भैया, सिद्ध गुफा के द्वार पर एक सिंह पहरा देता है।

अभी आप महेश कटारी द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 25वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पदम भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, पिंगला कंचन राजानी, जीवक तनवीर अहमद, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, चंपा अनुराधा, महामात्य अर्शद बाल और मैनावती दिव्या पवार, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महल से चले जाते हैं। इसका कारण एक चमत्कारी फल था। चारुमित्रा के साथ वे उज्जैनी वापस आते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 25वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन EIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विगत दिनों दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के महानिदेशक ने दिल्ली मेट्रो को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर की जा रही विद्युत आपूर्ति के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्रा का तात्याटोपे स्टेडियम भोपाल से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ विधायक और अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित विधायक, सांसद, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, NCC कैडेट्स और स्थानीय जन शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। विभिन्न स्थानों पर रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में भारत की अश्मिता चालिहा ने चीन की हान छियानशी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे काकोरी कांड के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्व आदिवासी दिवस एवं भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस। साथियों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर। वार्ताकार है परशुराम शुक्ल बिरही। साथ ही क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं काकोरी कांड के बारे में। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने

प्राणों का बलिदान दिया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। यह घटना 9 अगस्त सन 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट हुई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का धन प्राप्त कर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना तथा ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था। इस घटना ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया था। दोस्तों, काकोरी कांड का नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल ने किया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के युवा अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हर प्रकार का बलिदान देने को तैयार थे। दोस्तों, इसने देश भर के युवाओं में देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना को बढ़ाया। साथ ही इस घटना ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर किया। काकोरी के वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व आदिवासी दिवस पर। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और उनके योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आदिवासी समाज प्रकृति के सबसे निकट रहने वाला समुदाय है। उनकी जीवन शैली, रीति रिवाज, लोक कला और संस्कृति मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। इस दिवस के माध्यम से उनके सम्मान, विकास और अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, भारत में अनेक आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। गौंड, भील, संथाल, उराव, मुंडा, बैगा, नागा जैसी अनेक जनजातियां देश के विभिन्न राज्यों में रहती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में इनकी बड़ी आबादी निवास करती है। दोस्तों, आदिवासी समुदाय प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जंगलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। उनकी जीवन शैली पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलने की सीख देती है। इसके अलावा उनकी लोक कला, लोकगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान आज भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, भारत सरकार भी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करती है। शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और रोजगार संबंधी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान में भी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान, समानता और अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमें उनकी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। जब आदिवासी समुदाय सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त होगा, तभी हमारा देश वास्तविक अर्थों में समावेशी और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस हमें समानता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक चरण था। इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिवस हमें देशभक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और गति प्रदान की। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अब अंग्रेजी शासन को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इससे ब्रिटिश सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव पड़ा। यद्यपि आंदोलन के तुरंत बाद स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर कर दिया था। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर देता है। यह दिवस हमें अपने लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आज के युवाओं का कर्तव्य है कि वे देश के विकास में ईमानदारी, अनुशासन और सेवा की भावना से योगदान दें। यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस आंदोलन ने पूरे देश को स्वतंत्रता के एक सूत्र में

0: बांध दिया था। 9 अगस्त को मनाया जाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस हमें यही याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। इसलिए हमें अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। यही इस स्मृति दिवस का वास्तविक संदेश और उद्देश्य है। दोस्तों, अभी समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है परशुराम शुक्ल बिरही।
1: भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद ही भारत स्वाधीन हुआ था। अगस्त सन 1942 की 8 तारीख को महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था, उद्धरण, मैं अगर हो सके तत्काल इसी रात
2: फोन लगा फोन
1: प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ।
2: नॉइज गई, नॉइज गई, झूठ सही
1: का बोल,
2: नॉइज कम हुई है।
1: आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या दूसरी मांगों के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीन
2: ट्रांसफर करो
1: किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में
2: अरे भाई संजो कर रुको, रुको, रुको, रुको, रुको।
1: और हर एक रुको, रुको, रुको, में इसका जाप करें। यह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते जीवित नहीं रहेंगे। उद्धरण समाप्त। अभी सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पाई थीं कि अंग्रेजों के अधिकारी और सिपाही सड़कों पर फैल गए। दिनांक 9 अगस्त को तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अनजानी जगहों पर जेलों में बंद कर दिया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी थीं। इन गिरफ्तारियों ने पूरे देश की जनता को सकते में डाल दिया और पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। जनता का दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी थी। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में काम बंदी और हड़तालें हुईं, उग्र प्रदर्शन हुए। आंदोलनकारी जनता पर अंग्रेजी सरकार के लोगों ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाईं। बार बार की गोलीबारी और अंग्रेजों के दमन चक्र से पीड़ित जनता का क्रोध उबल पड़ा और उसने अनेक स्थानों पर हिंसक कार्यवाहियां की। जनता ने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों आदि अंग्रेजों के शासन के तमाम प्रतीकों पर आक्रमण किए। उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए, खंभे गिरा दिए, रेलवे लाइन उखाड़ दी और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर शहरों, कस्बों, गांवों में विद्रोहियों का अस्थायी शासन भी हुआ। संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश राज्य लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, तामलुक और बम्बई या मुंबई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली थी। इन सारी विद्रोहात्मक कार्यवाहियों में आमतौर पर विद्यार्थी, किसान, मजदूर और साधारण नागरिक भागीदार थे। उच्च वर्गीय लोग मूक दर्शक बने रहे थे। अपवाद स्वरूप कुछ उच्च वर्गीय अवश्य इस आंदोलन में शामिल हुए थे। सरकार ने अपनी ओर से भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। उसके द्वारा किए गए दमन

की कोई सीमा नहीं थी। अखबारों और प्रेस का पूरी तरह गला घोंट दिया गया था। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई थी।

0: बाद जैसा दमन हुआ था वैसा ही दमन अंग्रेजों की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरी तरह दमन कर दिया गया था। देश की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व इस बात में था कि इसने यह सिद्ध किया कि देश की राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और देश की जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। इस क्षमता को अंग्रेज कुछ कुछ समझने भी लगे थे। देश की जनशक्ति जाग चुकी थी। राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाले उसके कवि अपनी कविताओं द्वारा जनता का साहस बढ़ा रहे थे। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता की पंक्तियां इस दृष्टि से दोहराने योग्य है। महाप्रलय होने दे निष्ठुर, कर विनाश की तैयारी, सर्वनाश हो पराधीनता, यों ही भारत की सारी, बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं, डरो नहीं, बढ़े चलो, ऐसी कविताओं से जनता का मनोबल स्थिर बना हुआ था। उसकी मानसिकता में अंग्रेजों के शासन के प्रति विरोध की उग्रता बनी हुई थी। ऐसे वातावरण में सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसकी चपेट में सैकड़ों लोग मारे गए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने कोई सहायता कार्य नहीं किया। नेता अब भी जेलों में बंद थे। जनता के गुस्से को पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही थी। समय ने जनता को राहत दी। समय की शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े आक्रमणकारी सम्राट धनाढ्य विद्वान तपस्वी आदि समय के एक इशारे पर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ तो उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः सन 1942 की भारत छोड़ो मांग को विजय मिली। दिनकर की ये पंक्तियां याद आती हैं। जनता की रोके राह किसी में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। दो साथ समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा और इसे स्वतंत्र करना पड़ा, किंतु जाते जाते अंग्रेज देश को दो भागों में बांट गए। आज हम एक संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमारा प्रजातंत्र संसार का सबसे विशाल प्रजातंत्र है। हम 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुए थे, अतः प्रतिवर्ष इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय भारत छोड़ो आंदोलन पर। वार्ताकार थे परशुराम शुक्ल बिरही। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य की उन्नति का आधार उसकी सोच होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व और भविष्य बनता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक, उदार और व्यापक होगी तो हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति को सीमित विचारों में बांध देती है और उसके विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए कहा जाता है संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित, पक्षपातपूर्ण और रूढ़िवादी सोच रखना। ऐसा व्यक्ति केवल अपने विचारों को ही सही मानता है और दूसरों के विचारों, संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। वह जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। इस प्रकार की सोच व्यक्ति को नए विचारों और परिवर्तनों को स्वीकार करने से रोकती है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है। व्यक्ति नई बातें सीखने और नए

अनुभवों को अपनाने से डरता है, वह समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। साथियों, संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव और आपसी संघर्ष को जन्म देती है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं इसी सोच का परिणाम है। जब लोग एक दूसरे को समान सम्मान नहीं देते, तब समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत उदार और व्यापक सोच समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती है। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और सहिष्णुता का विकास करती है। परिवार और विद्यालयों को बच्चों में समानता, सहयोग और मानवता के संस्कार विकसित करने चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए और नए अनुभवों को अपनाना भी हमारी सोच को व्यापक बनाता है। साथियों, संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो हमें संकीर्ण विचारों का त्याग करना होगा। हमें सभी लोगों के प्रति समान सम्मान, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। व्यापक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और मानवता के मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। यही एक प्रगतिशील, समरस और विकसित समाज की पहचान होती है। दोस्तों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हमने कराए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारे सुमधुर से गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म सुर का। इसमें सुमधुर आवाज है महालक्ष्मी अय्यर की। गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है MM क्रीम का। तो शाम की चाय के साथ आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, अब हम आपको लिए चलते हैं बॉम्बे। जी हाँ, यानी फिल्म का नाम है बॉम्बे और इसमें सुमधुर आवाज़ है चित्रा की। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत है ए आर रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्रिमिनल से सुमधुर आवाज अलका याग्निक की। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है MM क्रीम ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म वो लम्हे से, स्वर हैं ग्लेम जॉन के, गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म वो लम्हे के इस गीत का एक छोटा सा टुकड़ा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए, अब समय है अंतराल का।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का मुख्य विषय है जनजातीय धाय, सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। प्रदेश में भी आज आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कई क्षेत्रों में रैलियां आयोजित की गई, साथ ही विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा का टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से शुभारंभ किया। यात्रा में विधायक, सांसद, महापौर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय जन शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं

0: वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। मौसम विभाग के अनुसार आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में भारत की अश्मिता चालिहा ने चीन की हान शियानशी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत। जैसा कि आप जानते हैं, सावन चल रहा है, तो आइए हम भी सावन का आनंद लें इस गीत के साथ। ये गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और इसकी धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी आज दिनांक 9/8/2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोनिन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ की फसलों, कीट में रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 9 अगस्त यानी आज अभी शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 9 अगस्त यानी आज अभी शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिनेत्री का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर के। मजरूह के लिखे गीत को संगीत में बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की आवाज़ में फिल्म लम्हे का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसमें धुन बनाई है शिवहरी ने।

ऐसा प्यार कहाँ, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाते हैं आशा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आपके सामने पेश है मन को लुभाने वाला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मंजिल से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा योगेश ने और संगीत है आरडी बर्मन का।

सौतन। आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द रचना है प्रवीण भरद्वाज की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लेकिन कार्यक्रम संबंधी सूचना एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी आज 9 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ की फसलों में कीट में रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 9 अगस्त यानी आज अभी शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुन ली। दिनांक 9 अगस्त यानी आज शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म महबूबा से। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अंदाज़। आइए सुनते हैं इस फिल्म में अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को। ये शब्द रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का ये बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यलगार से। स्वर हैं उदित नारायण और सपना मुखर्जी के, शब्द रचना है सुदर्शन फाकिर की और संगीत है चन्नी सिंह का।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

यलगार फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना।

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज और कल की सभाओं में प्रसार

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का चहेता कार्यक्रम ग्राम सभा। इसी कार्यक्रम में 7:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए विषय है खरीफ फसलों में कीट रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा। रात 8:00 कार्यक्रम डगर विकास की, जिसमें विषय होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। फिल्म संगीत होगा 8:30। रात्रि 9:30 आप सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में आज आप सुनेंगे सात्विक मोहन का कर्नाटक वोकल।

कल प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर आप सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत में छगनलाल वर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनेगा उर्दू कार्यक्रम आईना। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे दयाशंकर और साथियों का शहनाई वादन। राग होगा गुजरी तोड़ी। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 26वां भाग। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण प्रस्तुति होगी आकाशवाणी भोपाल की। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम रहेगा। फिल्म संगीत शाम 5:33 शाम 6:30 और रात्रि 8:30। शाम 6:40 पर कार्यक्रम सुनेगा आजकल। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:00 संसद समीक्षा, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में।

कल रात्रि 9:30 बजे दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनिएगा पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, इसे भी हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, हम एक बार आपको पुनः बता दें कि आज अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनिएगा ग्राम सभा कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें विषय है खरीफ फसलों में कीट रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत तिरंगा रैलियों, यात्राओं, संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लेकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता उड़ानों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में करीब 10 नए एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भोपाल से शारजहा की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है।
1: 2 महीने बाद शारजहा की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम और CM हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा और विद्यालयों से ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन तक आसानी से

0: पहुंचना चाहिए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 50 बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर के पीपल गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झाबुआ, धार, खरगोन सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले के बदनावर में आज हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर से शवों को बाहर निकाला। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन को गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी।
2: बदनावर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रथम जानकारी जो प्राप्त हुई उसके अनुसार एक परिवार दाहोद का रहने वाला था, जो उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करके लौट रहा था। उसी दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले कंटेनर के द्वारा उसको सामने से टक्कर मारी गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। एक घायल है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली उसमें कंटेनर का जो ड्राइवर था उसके द्वारा एल्कोहलिक होना पाया गया है। इसमें उसकी MLC कराई जाएगी और उसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और पश्चिमी हिस्से में 18% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम जिले में नागद्वारी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की है। आगरमालवा में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर कल 51,000 कलश यात्रा निकाली जाएगी। और नीमच में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वीर पार्क रोड स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय,

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
6: ब्रो, ये फटा है।
7: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
6: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: राम राम स्वीकारें ग्राम सभा के सभी श्रोता। मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की संजय बिरिया है। भैया बरसात हो रही है भोपाल में और आपके तक का हो रहा है, बरसात कैसी हो रही है हम आज जान पे हैं आपसे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम के माध्यम से। कैसे के बस थोड़ी देर बाद हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, ठीक 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू।
1: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है, मैंने सुने अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम सुनवे बारी हमारी सभी बहनन को और भौजीहरन को कल्पना बहन की राम राम और करत हैं स्वागत आज के घर आंगन कार्यक्रम में। और बताओ बिन्नाहरो और भौजीहरो कैसे का हाल चाल है आप और उनके। हम समझ गए हैं आज हमारी बहनन के और भौजीहरन के चेहरे पे खूब खुशी दिख रही है। कहे से कि देखो मौसम भी नेक भीगो भीगो हैगा है और मन को भी खूब ही नीको लग रहा है और संग में देखो तन को भी खूब ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने देखो जिस चौमासन में अपने खान पान पे भी ध्यान रखने हैं है, बाहर की बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने हैं ना अपने मोड़िन को खाने देने हैं। कहे से कि देखो कैसे भी छुप के अब मोड़ा मोड़ी खावे को चले जाते हैं तो बिन पे ध्यान रखने हैं। कहे से कि बहनों देखो अब जा टाइम स्वच्छता को तो विशेष ध्यान रखने हैं तो स्वच्छ भोजन स्वच्छ पानी को इस्तेमाल करने हैं। अगर पानी तनक भी गंदो आ रहा है तो उबाल के छान के ही पानी पीने हैं। अगर हो सके तो वहाँ में फिटकरी डाल देवे फिर छाने उबालें फिर ठंडो करके पिए तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे ही बहनों जो अपने देखो पशुधन है बिनको जो गौशाला है भाई भी साफ सुथरा रखने हैं जैसे हमारे पशु भी स्वस्थ रहें। ऐसे ही बहनों देखो अब आज को टाइम तो ऐसा है चाहे देखो बेटा हो या बेटी और दोनों के उज्जवल भविष्य की चिंता माता पिता को रहते हैं।

जितो ध्यान अपन मौड़ा पे देते हैं उतो ही मौड़ी पे देते हैं। काहे से कि देखो आज हमारी मौड़ी मौड़न से भी ज़्यादा नाम रोशन कर रही है। तो आज देखो साइकिल से लेके हवाई जहाज तक चला रही है। कोई डॉक्टर है तो देखो कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है तो कोई वकील है, या और फिर कोई खुद को रोजगार चला रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमारी भारत सरकार ने एक विशेष योजना शुरू करी है जी को नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना हमारी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। तो इको उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और आगे के जीवन के लिए आर्थिक सुरक्षा तैयार करना है। बिना रो देखो अगर आपके घर में बेटी है और उनकी आयु 10 वर्ष से कम है तो उनके नाम से सुकन्या समृद्धि खातों खुलवाओ जा सकता है। और यह खातों माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बेटी के नाम पर खोलो जाते हैं और एक परिवार में दो बेटियों के नाम से खाते खोले जा सकते हैं। और बिना हरो देखो खाते में अपनी सुविधा के अनुसार हर साल पैसे जमा करे जा सकते हैं और खाते में जमा राशि पे सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी मिलता है। जैसे कि समय के अनुसार आपकी बचत बढ़ती है और खाते में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करवो जरूरी होता है और कम से कम 150,000 रुपये तक एक साल में जमा करे जा सकते हैं। तो बिना रो देखो ये योजना की खास बात तो ये है कि यह लंबे समय की बचत के लिए बनाई गई है। इसे बिटिया की उच्च शिक्षा और भविष्य की ज़रूरतों के लिए धन इकट्ठो करने में भी मदद मिलती है। और मैंने कछु नियमों और शर्तों के अनुसार बेटी की शिक्षा के लिए खाते से राशि भी निकाली जा सकता है। और हाँ बहनों, सुकन्या समृद्धि खातों डाकघर और अधिकृत बैंकों में खोलो जा सकता है। और खोलत टाइम बेटी को जन्म प्रमाण पत्र और आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज पांगे जा सकते हैं। तभी तो बहनों बेटी के जन्म से ही उनके भविष्य की चिंता करवे के संग संग थोड़ी थोड़ी बचत की आदत भी डालने है। तो आज की छोटी बचत कल बेटी की बड़ी ज़रूरतें पूरे करवे में सहायक बन सकते हैं। बहनों एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि बेटी की पढ़ाई और बिटिया को भविष्य और बिटिया की आर्थिक सुरक्षा भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी होता है। अब बहनों देखो सावन लग गया है और हमारी बहनें अपने मायके जावे की खूबी तैयारी कर रही हैं। काहे से के अपने भैया से मिलवे की खुशी तो कुछ अलग ही होता है। भैया भाई बहन को एक पवित्र त्यौहार जो होता है तो हमारी बहनों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो सुन लेते हैं जो सावन गीत ममता गोस्वामी से।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेनो देखो ब्राह्म के पास स्वागत है फिर से घर आंगन कार्यक्रम में। बिनारो देखो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य ही पहलो धन है और पहलो सुख निरोगी काया। बेनो जब हम स्वस्थ रहते हैं तो मन को खूब इनको लगाते हैं, फिर दिन भर खुशी खुशी घर को काम काज करत रहते हैं। तो बेनो देखो अपाओ खान पान निको राखने हैं और अगर कोनो प्रकार की हारी दुखारी है भी जाए या फिर शरीर में कौन से

0: में दर्द हो या गांठ ठुसी लगत हो या फिर माहवारी में कोनो दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो जय संबंध में एक विशेष जानकारी लेके आए हैं, जाको विषय है बच्चेदानी एवं स्तन रोगों का बचाव कैसे करें। जाकी जानकारी दें हैं डॉक्टर दीप्ति बुनकर और उनसे बातचीत करेंगी बहन आरती शुक्ला। तो चले अपन सुनते हैं जो भेंट वार्ता।
1: बहनों, अक्सर पेट में जब हमारे दर्द होता है तो हम उसे हल्के में लेकर यह कहकर टाल देते हैं कि शायद भोजन अच्छे से पचा नहीं है और इसी कारण हमारे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन बहनों, जानकारी के अभाव में हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है, यानी कि बच्चेदानी में गांठ या संक्रमण भी हो सकता है। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दीप्ति बुनकर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति बुनकर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर दीप्ति बुनकर आज हमें जानकारी दे रही हैं बच्चेदानी एवं स्तन रोगों का निदान कैसे, इस विषय पे।
2: अक्सर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो कुछ कॉमन समस्याओं को लेके आते हैं, जैसे कि बांझपन या लकोरिया, सफेद पानी की शिकायत लेके आते हैं। कभी कभी खून का रिसाव होता है नीचे के रास्ते से, उसके लिए लेके आते हैं। पेड़ों में भारीपन रहता है या कई बार लैट्रिन पेशाब की समस्या को लेके भी आते हैं। कई बार कुछ मरीज आते हैं कि नीचे के रास्ते से कुछ आ रहा है बाहर। ये कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं पेशेंट के।
1: जैसे भी आपने बताया है बांझपन की समस्या
2: जी,
1: तो बांझपन की समस्या मतलब ये किस कारण से हो जाता है, इसके बारे में हमारी बहनों को आप जरा जानकारी दें।
2: सबसे पहले तो कुछ बच्चेदानी की कुछ जन्मजात परेशानियां होती हैं। तब बच्चा पेट में होता है माँ के, तभी उसका सही ढंग से, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो महिलाओं में होता है बच्चेदानी और अंडाशय का होना, तो उनकी खराबी हो जाती है। वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, जैसे कि कभी कभी बच्चेदानी बनती ही नहीं है, उसको मेडिकल की भाषा में एजेनेसिस कहते हैं। कई बार बनती है लेकिन सही ढंग से नहीं बनती है, उसको डिसजेनेसिस कहते हैं। कई बार बनती है लेकिन उसका आकार सही नहीं होता है, या कई बार आकार भी सही होता है तो उसके अंदरूनी कुछ परेशानियां हो जाती हैं, उसके कारण बांझपन की समस्या हो जाती है। एक तो ये कंजेनाइटल, जिसको कॉज बोलते हैं, यानी कि जन्मजात परेशानियां होती हैं, इसके कारण ये दिक्कत आती है। दूसरा कारण होता है संक्रमण। अगर बच्चेदानी में कोई संक्रमण हो गया तो उसके कारण भी कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं बच्चेदानी में कि बांझपन की शिकायत हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर जो जगह रहती है जहाँ पर कि बच्चा बड़ा होता है वही सिकुड़ जाता है, या उसकी जो ट्यूब्स होती हैं बच्चेदानी की उनमें सिकुड़न आ जाती है, तो जिसके कारण बांझपन हो जाता है। कई बार कुछ गांठें हो सकती हैं, जैसे कि बच्चेदानी के मुँह पर ही गांठ हो गई है, तो मुँह पर गांठ होने से स्पर्म रहता है वो ऊपर नहीं जा पाता, प्राणु जिसे बोलते हैं वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो जब तक वो गांठ नहीं हटाई जाएगी तब तक उस महिला गर्भवती नहीं हो सकती है।
1: इसके साथ साथ जैसे आप फेत पानी की समस्या भी महिलाओं में आम बीमारी का रूप लेती जा रही है, तो ये कैसे हो जाती है?
2: सबसे जो कॉमन कारण है सफ़ेद पानी का, वो होता है संक्रमण। संक्रमण होता है महिलाओं में ज़्यादातर सफाई से ना रहने के कारण, कि आप महावारी के समय कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो गंदा इस्तेमाल करते हैं, या अगर उसको बहुत देर तक इस्तेमाल करे रहते हैं उसको बदलते नहीं हैं, तो ये कॉमन कारण है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी सफाई ना रखना। कुछ और भी कारण है, जैसे कि मधुमेह। मधुमेह में भी संक्रमण बहुत ही जल्दी हो जाता है। कई बार गांठें भी होती हैं कुछ बच्चेदानी में, जिनको पॉलिप्स कहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी का रिसाव होता है।
1: तो जैसे भी आपने बांझपन की समस्या बताई, सफ़ेद पानी की समस्या बताई,
2: खून का रिसाव भी संक्रमण के कारण हो सकता है, या कुछ बच्चेदानी में गांठ हो। ज़्यादातर कैंसर वाली जो गांठें होती हैं उनके कारण बच्चेदानी से खून का रिसाव होने लगता है। खून के रिसाव के भी अलग अलग समस्या रहती है, जैसे कि नॉर्मल महावारी आती है तो उसमें भी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ये भी समस्या लेके आती हैं। या कई बार बुढ़ापे में बंद हो जाता है महावारी, इसके बाद में कई लोगों को अचानक शुरू हो जाती है, ऐसी समस्याएं लेके भी आती हैं।
1: और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको महावारी बंद भी नहीं होती,
2: बंद ही नहीं हो रही है।
1: तो जैसे भी आपने कारण बताए, इन सब बीमारियों से निजात पाने के उसके लिए हम क्या उपाय करें, क्या निदान है इन बीमारियों से बची रहे?
2: सबसे पहला तो कोई भी लक्षण जो है उसको हल्के में ना लें। कोई छोटा इंडिकेशन भी कोई बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। थोड़ी सी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें उसमें।

0: बच्चेदानी की समस्याओं की जिस कारण से आता है, कॉमनली उस अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है उसको। अब अल्ट्रासाउंड भी दो तरीके से होते हैं, एक तो ऊपर पेट से किया जाता है, दूसरा पेशाब के रास्ते से किया जाता है। तो पेट से के ऊपर से किया जाता है, उसमें बच्चेदानी के अलावा और भी चीज़ें हमें आसपास की दिखती हैं पेट की। और एक और जो पेशाब के रास्ते से किया जाता है उसको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। जो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी रहती है तो उसमें निचले हिस्से की ही चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि बच्चेदानी दिखाई देगी, अंडकोश दिखाई देंगे या उसके आसपास जो आंतों के हिस्से हैं वो दिखाई देंगे। कुछ शुरुआती स्टेज में तो हम इन्हीं से देखते हैं, कई बार पता चल जाता है कि संक्रमण है या कोई गांठ है या कहीं कुछ पस इकट्ठा हो रहा है या कुछ और समस्या है। उसको देखते हुए अगर उसमें पूरा नहीं निदान हो पाता है तो हम और भी जाँचें कराते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अच्छा खान पान
1: अच्छा बिल्कुल
0: कि साफ सफाई से रहना है महावारी के समय। और पहले तो हमें रोज ही नहाना चाहिए, अगर किसी कारणों से नहीं नहा पा रहे हैं तो कम से कम अपने अंदर के अंडरगार्मेंट्स जरूर चेंज करना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो रूटीन जांचें होती हैं, जो एनुअल चेकअप लोग कराते हैं, वार्षिक अपने चेकअप कराते हैं, वो सब कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती हैं, वो भी कारण होती हैं बच्चेदानी की कुछ समस्याओं। संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है मधुमेह के मरीजों में, तो उनको भी के लिए जागरूक रहना चाहिए कि जांचें जल्दी जल्दी कराएं वो अपने,
1: बिल्कुल, और स्वस्थ रहें। तो अभी आपने बच्चेदानी के जो रोग हैं और उनके जो कारण हैं और उनसे हम कैसे निदान पाएं, ये भी आपने हमारी बहनों को इस विषय पर जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर बहन, हम आपसे स्तन रोगों के बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कई प्रकार के स्तन रोग आजकल देखने सुनने में आ रहे हैं। स्तन रोगों से हमारी बहनें कैसे बची रहें और इनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हैं?
0: जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण रहते हैं जिसके कारण पेशेंट जो समस्या लेके हमारे पास में आता है, वो कई बार होता है कि स्तन में सूजन है, कहीं कोई गांठ है या बल है, उससे कुछ सफ़ेद पानी सा आ रहा है या कभी खून आ रहा है, दर्द को लेके आती हैं, लालपन को लेके आते हैं। तो ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं किसी भी बीमारी के। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण रहते हैं इसके, तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ जन्मजात अंतर होते हैं, साइज में भी अंतर होता है, तो कई बार ये परेशान होता है कि कहीं कुछ गांठ तो नहीं हो गई है, एक में क्या समस्या हो गई है कि अंतर बहुत ज़्यादा है। इसको कॉस्मेटिक तरीके से भी उस फेस करता है कि मतलब अंतर है बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट के साइज में। दूसरा कारण होता है कि जैसे कि दर्द है, कुछ संक्रमण भी हो सकता है ब्रेस्ट में या कोई गांठ हो सकती है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। मैं गांठों को लेकर आजकल पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं और वो खुद भी बहुत जागरूक हो रहे हैं अभी पेशेंट की, कहीं कहीं कैंसर की तो वो गठान नहीं हो गई है। जो गांठें होती हैं ब्रेस्ट में तो वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई बार पेशेंट को फैट होता है, वही ऐसा लगता है कि कहीं गांठ तो नहीं हो गई है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ ऐसी गांठें हो जाती हैं जो कि कैंसर की नहीं होती हैं।
1: अच्छा।
0: या कहीं कुछ फोड़ा तो नहीं हो गया है, या किसी को चोट लगने के बाद में खून का जमा हो जाता है, उसकी गांठ बन जाती है, कहीं वो तो नहीं। तो ऐसे अलग अलग ये समस्याएं हो सकती हैं पेशेंट के साथ में।
1: तो अगर इस तरह की कुछ समस्या दिखती है तो उन्हें तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और साथ साथ इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं कि जिससे वो इन समस्याओं से दूर बनी रहे।
0: सबसे पहले तो ये रहता है को बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, है उसमें महिला खुद अपने हाथ से देखती है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं हो, और छोटी गांठ भी महसूस हो अगर तो उसको तुरंत ही जाके चिकित्सक से वो संपर्क करे, क्योंकि कई बार जागरूक नहीं होते, लगता है कि कोई गांठ है और वो धीरे धीरे भयावह रूप ले लेती है। तो इसलिए उसको शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए तो वही ज्यादा सही रहता है।
1: और जैसे भी आपने बताया था कि रिसाव भी होने लगता है, तो रिसाव किन कारणों से होता है?
0: एक तो संक्रमण तो कारण होता ही है, इससे सफेद पानी भी का रिसाव हो सकता है, खून का भी रिसाव हो सकता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा होते हैं कैंसर।
1: अच्छा।
0: कैंसर की गांठें मुख्यतः कारण होती हैं खून के रिसाव का।
1: जी।
0: संक्रमण भी है और गांठें भी हैं कैंसर की। स्तन की जाँचें होती हैं, उनको हम सोनो मैमोग्राफी बोलते हैं।
1: जी।
0: तो इनके तीन तरीके होते हैं करने के, एक तो एक्सरे से होता है, दूसरा अल्ट्रासाउंड से, और तीसरा होता है एमआरआई से। एक्सरे से जो जांच की जाती है तो उसमें स्तन का कुछ हिस्सा कवर होता है, कुछ बगल का हिस्सा भी कवर होता है, पर पूरी तरह नहीं हो पाता। जो भी मैमोग्राफी की जाँचें होती हैं, स्तन की जो पूरी जाँचें होती हैं, उसमें हमें स्तन को देखना होता है, दोनों बगलों को देखना होता है, गर्दन के निचले हिस्से को और पेट के ऊपर के हिस्से को भी देखना होता है।
1: उसी के आधार पर हमें पता लगता है कि कहीं स्तन कैंसर तो नहीं है या सिंपल ऐसे कोई हल्का फुल्का संक्रमण है, लेकिन

0: अगर संक्रमण भी है तो उसको भी हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसके अलावा आप हमारी बहनों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हमारी बहनें स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनी रहें?
1: पहली बात तो जैसे कि आप कोई भी समस्या लेके आते हैं डॉक्टर के पास में और निदान उसका बताते हैं, तो जैसे बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सोनोमेमोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड से उसकी जांच की, उसमें एक इलास्टोग्राफी भी होती है, तो उसमें हम देख के बताते हैं कि मतलब कैंसर की कितनी संभावनाएं हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है, कई बार उसका आकार प्रकार कैसा है वो देख के बताते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमें कैंसर की संभावना लगती है तो हम पेशेंट को बायोप्सी का भी एडवाइस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई सारे पेशेंट वो एडवाइस नहीं मानते और फिर बाद में आगे वाली स्टेज में जाके प्रेजेंट पहुंच जाते हैं। कई बार जो शरीर में फैल भी जाता है कैंसर, मेटास्टेसिस हो जाता है, कई बार पेशेंट काफी डर जाता है कि पता नहीं क्या निकल आएगा, तो जांच आगे की कराता ही नहीं,
0: बिल्कुल।
1: तो वह आंखें बंद करने वाली बात है, तो आंखें बंद करने से तो रोग नहीं जाएगा, तो उसकी पूरी जाँच कराना बहुत जरूरी है।
0: तो डॉक्टर दीप्ति बुनकर बहन, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमें बच्चेदानी एवं स्तन रोगों का निदान कैसे करें इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अबे आप सुन रही थी जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो बच्चेदानी एवं स्तन रोगों का बचाव कैसे करें, जाकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर दीप्ति बुनकर और उनसे बातचीत कर रही थी बहन आरती शुक्ला। तो बहनों देखो, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अबे डॉक्टर दीप्ति बुनकर बहन ने पूरे विस्तार के साथ अपनी बहनन के स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से बातें बताई, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनन ने ध्यान से सुनी होगी और अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देंगी। अब बहनों देखो, बारी है एक और गीत की, तो सुन लेते हैं झूला गीत आवा खरे से।

बहनों देखो, अब अपन चर्चा करें हैं काकोरी हत्याकांड घटना के बारे में। बहनों, ये घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास भई थी। उस समय बहनों भारत पे अंग्रेजों का शासन हतो और देश को आज़ाद करावे के लिए कई क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे और उनके पास आंदोलन चलावे के लिए धन की कमी भी हती। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार को खजाना ले जा रही रेलगाड़ी को रोकवे के लिए सरकारी धन अपने कब्जे में ले लो। बिन उको उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि देश की आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करो हतो। बिनो काकोरी कांड हमें जैसे कहते कि देश की आज़ादी लाखों वीरों के त्याग और बलिदान से मिली है। तो बिनो आज हमारा कर्तव्य है कि हम उके सपनों को भारत बनावे में योगदान दें। तो बिनो ईमानदारी से मेहनत करने हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने हैं और कानून को सम्मान करें और समाज में भाईचारा बना के रखें। ऐसे ही मैंने तो कहे अपने बच्चन को जे भी समझाना है, बताना है कि तिरंगा भारत की आन बान शान और पहचान है। तो अपने तिरंगा में तीन रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो साहस और त्याग के प्रति है और बीच में सफ़ेद रंग जो शांति और सच्चाई को संदेश देता है और नीचे को रंग हरो वो हरियाली और समृद्धि को प्रतीक है और बीच में बनो अशोक चक्र हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे गांवन में भी बच्चे ई अभिभाव अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने माता पिता के संग घर में पे तिरंगा लगाए और उनको सम्मान को ध्यान रखें और स्कूल में होवे वाले कार्यक्रम में भाग लेवें, देशभक्ति के गीत गाएं और अपने साथियों को तिरंगा के महत्व के बारे में बताएं। और हमें ये तिरंगा ये भी याद रखना चाहिए कि देशभक्ति केवल तिरंगा फहरावे तक सीमित नहीं है, इके संग मन लगा के पढ़ाई करें, स्वच्छता रखें, पेड़ लगाएं, बड़ों का सम्मान करें और ज़रूरतमंदों की मदद कर वो भी देश की सेवा है। तो अब हर घर तिरंगा अभियान को समय भी चल रहा है। तो बहनों सुनाते जो देशभक्ति गीत।

बहनों देखो, अबे देखो सावन को महीना चल रहा है और हमारी सभी बहनें अपने भैया से मिलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली हैं। तो हमारी बहनों को देखो सजवे को संवरवे को बहुत ही ज़रूरी है। काहे से कि मायके जावे की खुशी ये हमारी बहनन के चेहरे पे तो खूब ही चमक आ जाते हैं और चमक आने भी चाहिए। तो हमारी बहनें देखो हरियाली तीज भी मनाते हैं, तो देखो चौ और हरियाली है तो मन को भी कितने नीको लगत है। ऐसे ही हमें बिना हरे भौजी हरे हरी साड़ी हरी चूड़ी और हाथन पे लाल लाल मेहंदी कितने खूबसूरत लगत है। तो बने देखो चेहरे पे रंगत लावे के लिए एक छोटो सा नुस्खा है, भाई ध्यान से सुनो या फिर लिख लियो। बने देखो आधी कटोरी कच्चा दूध लेवे और बामे एक चम्मच चावल, एक चम्मच मसूर की दाल, एक चम्मच उड़द की दाल और एक चम्मच चने की दाल डाल के भाई फूलबे को रख दे। जब वो अच्छे से फूल जाए तो भाई खूब बारीक पीस लेवे। फिर बामे शहद डालें और जैतून को तेल हो या फिर बादाम को तेल या फिर देखो मलाई हो, ये मिला के चेहरे पे लगाए। जब सूख जाए तो भाई धो लें। तो फिर देखो बहनों आपके चेहरे पे इतनी चमक आएगी और झुर्रियाँ भी दिखाई नहीं देंगी और कालोपन वो भी चलो जाएगा और आप बहुत सुंदर लगेंगे। अब बहनों देखो जावे की बेरा हो गई है, हम आपसे फिर मिले। हम कल्पमा बहन की सभी बहनन को राम राम।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और

0: 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है, क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: नमस्कार
0: अशोक जी। सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
1: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था, और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको, जैसे आपने भी कहा, कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
0: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी?
1: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी। और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है, वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है, और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना

0: की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है, यानी देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं, क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी
1: जी
0: उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी।
1: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सके योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
0: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक ना तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और ना ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है, लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
1: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसा आपने कहा, स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में, लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का एक यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में इन वीर सेनानियों कि जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था, और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
1: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी

0: कि प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूअल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हर एक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रीय गान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
0: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस हैं वो बता सकें।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसे माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
0: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति है आकाशवाणी छतरपुर की। विषय है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उनके सपनों तक पहुंचाया जा रहा है। श्रोताओं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, इस योजना में क्या बेहतर रूप से काम किए जा रहे हैं, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं सेडमैप के जिला समन्वयक श्री एम.के. श्रीवास।
1: DDU.Y. के एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार उन्मूलन योजना है कौशल विकास की दिशा में। इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं को कौशल दक्ष बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें 18 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, मुख्यतः शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें योग्यता शिक्षा के आधार पर उनके कौशल को अलग अलग तरह से दक्ष प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उन्हें NSDC के माध्यम से उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है और इसके लिए शासन अलग अलग तरह से ट्रेड के अनुसार उनको आर्थिक सहायता भी देती है और दक्ष युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करती है। विभिन्न स्वरोजगार योजना है जिनमें स्वरोजगार के लिए प्रकरण बनाकर उनको शासन की वित्तीय सहायता भी दिलाते हैं तथा कुछ इंटर्नशिप स्कीम है उसके माध्यम से भी उसमें लिंक करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह के कौशल के माध्यम से लोगों के हुनर को सृजन करके उनके हुनर को परिष्कृत करके आज के वर्तमान परिवेश में दक्ष करने का प्रयास किया जाता है।
2: सर, इस योजना में जो हितग्राही होते हैं प्रशिक्षण उपरांत उनको जो रोजगार से जोड़ते हैं स्वरोजगार से, उसके लिए क्या पात्रता होती है ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए? क्या कुछ उनके पास अर्हता होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा सर्टिफाइड होना चाहिए?
1: इसमें डिप्लोमा सर्टिफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण युवाओं जो खासतौर से गरीब तबके के जो लोग हैं उस श्रेणी में आना चाहिए। खासतौर से BPL के लोगों को, BPL नहीं है तो खाद्यान्न पर्ची की पात्र हितग्राहियों को, कुल मिला के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए स्कीम है और इसमें शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार शिक्षा है और व्यक्ति की शिक्षा के अनुसार अलग अलग प्रकार के ट्रेड हैं। साक्षर हैं तब भी, 5वीं पास हैं तब भी, 10वीं पास हैं तब भी, 12वीं पास हैं तब भी आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। नगर पालिका और जनपद पंचायतों के माध्यम से अपने आवेदन पंजीयन करा सकते हैं वहाँ से और इसमें अनेक लोगों ने लाभ लिया है, अपने हुनर प्राप्त किए हैं।
2: सर, हम ये भी जानना चाहेंगे इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
1: इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को वर्तमान परिवेश के अनुसार हुनर में दक्ष करना, ताकि बच्चे अपने कौशल के बारे में आत्मनिर्भर बने और रोजगार स्वरोजगार के लिए दक्ष होकर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करें।
2: हमारे युवा भाई बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, वो इस योजना का लाभ लें, क्या कहेंगे?
1: योजना के लिए मैं भाई बहनों से कहना चाहूंगा, यदि आपको जीवन में कुछ करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में एक हुनर को अपना दोस्त साथी बनाएं। हुनर ही व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र होता है और हुनर को परिष्कृत करने के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है और दक्ष है, जो आपको हुनर से रोजगार और स्वरोजगार दे सकती है। तो इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और एक हुनर कम से कम अपन को धारण करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गांव-गांव तक भारत सरकार पहुंच रही है और युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही इस योजना में और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 और इस योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है और प्लेसमेंट किस तरह से होता है, इस योजना के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं आप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासकीय ITI छतरपुर के प्राचार्य श्री RS जादौन।
3: ITI जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग

इंस्टीट्यूट है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे खुद के संस्थान में 8 ट्रेड हैं और पूरे जिले में 8 ट्रेड ऐसे चल रहे हैं जो कि

0: डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन आती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए विभिन्न लोगों की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, डिफरेंट टाइप के सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब में एक मैन फोर्स की जरूरत होती है जो कि स्किल्ड हो। जनरली तीन टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं, एक सेमी स्किल्ड होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। हम लोग अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाने का कार्य करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ट्रेंड होके और OJT कर लेता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता है, तो उसको स्किल्ड पर्सन मानने लगते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न ट्रेडों की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ट्रेड है हमारे यहाँ, उसमें हम पाइथन लैंग्वेज हुआ और AI से रिलेटेड टूल्स हुए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हैं, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उनका प्लेसमेंट होता है और जहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो टूल इक्विपमेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। मशीनरी जैसे लेथ मशीन हुई, हाइड्रोलिक हुई, न्यूमेटिक हुई, इन मशीन की जानकारी दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि CNC DNC मशीन की भी जानकारी उनको दी जाए। अगर सब अच्छा रहा इस साल तो हमारा ये भी विचार है कि बच्चे को कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर, इनकी भी जानकारी हम उस ट्रेड में देना चाहेंगे। उसके बाद सर, जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है वेल्डर, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। तो वेल्डिंग में जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हुई, आर्क वेल्डिंग हुई, टिक वेल्डिंग हुई, मिग वेल्डिंग हुई, ऐसे बहुत सारे स्टेंस वेल्डिंग हुई, इन सारी वेल्डिंग्स के बारे में हम उनको बताते हैं बच्चों को, और जो मैकेनिकल रिलेटेड टूल इक्विपमेंट हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ग्रामीण युवाओं में कौशल को बढ़ावा देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण इच्छा रही है, उस पर काम भी हो रहा है युवाओं के लिए, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए, ताकि उन्हें आगे उनका काम मिल पाए और स्वरोजगार से वो जुड़ पाए।
0: हमने अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को ओपन कर रखी हुई है। उसमें क्या है कि बच्चों को स्वरोजगार रोजगार दोनों के बारे में बताया जाता है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा हमारे यहाँ का हो, वो कहीं का हो, पूरे जिले में कहीं का बच्चा है, तो हम उसको स्वरोजगार की भी जानकारी देते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये चीज अवेलेबल है, आप इसमें इतना कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ आते हैं, जितने भी ट्रेड हैं, वो ग्रामीण के लिए भी बराबर से खुले हुए हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारे बच्चों की एजुकेशन लगभग एक सी रहती है। ऐसी योजनाएं बना के गवर्नमेंट बच्चों लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। जो युवा पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में मतलब एक भारत निर्माण, भारत के एक विकसित निर्माण के लिए कार्यरत हो। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है कि विकसित भारत बने, तो वो ऐसे ही बनेगा जिसमें बच्चा स्वरोजगार और रोजगार दोनों से कंटिन्यू जुड़ता जाएगा योजनाओं के थ्रू।
1: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.2 हमारे ग्रामीण और शहरी युवाओं को एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। इस योजना और योजना से जुड़े हुए प्लेसमेंट में रोजगार कार्यालयों की क्या भूमिका है, इस संबंध में हमें बताते हुए आप हैं छतरपुर के जिला रोजगार अधिकारी श्री SK Jain।
2: शासन के द्वारा जो भी रोजगारी योजनाएं हैं या स्वरोजगारी योजनाएं हैं, इनको एकीकृत एक छत के नीचे लाने, बच्चे को एक ही टाइम पर सभी अवसर सभी जानकारी मिल सके, इसके लिए एक युवा संगम कार्यक्रम हम प्रत्येक माह आयोजित करते हैं। छतरपुर जिले के लिए वो निर्धारित है, चतुर्थ बुधवार को हम लोग करते हैं। उसमें हम इसको रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला और युवा संगम इसको कहते हैं। तो इसमें रोजगार मेले में जो कंपनीज आती हैं, जो डायरेक्ट मतलब प्लेसमेंट करती हैं बच्चों का, जो डायरेक्ट ऑन जॉब रोल रखती हैं, तो वो कंपनीज हम बाहर से बुलाते हैं। उसमें देश की प्रदेश की विभिन्न कंपनी रहती हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके आधार पर हम जिले में प्रचार प्रसार कराते हैं कि इस तरह की कंपनी आ रही है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बच्चों को पता चलता है। इसके अलावा दूसरा जो रहता है इसका एक एस्पेक्ट, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ITI के बच्चे, तो वो भी ITI की तरफ से अप्रेंटिसशिप की कंपनीज बुलाई जाती हैं। तो अप्रेंटिसशिप मेला भी इसमें कम्बाइंड रहता है, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी कंपनीज आती हैं, तो इस तरह से कंपनीज आती हैं। और स्वरोजगार योजनाएं जो भी चल रही होती हैं, उसके स्वरोजगार के हम विभागों को से कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड बैंक अधिकारी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो जिन्होंने भी अपने ऋण योजनाओं के लिए आवेदन किया है या आवेदन करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं और किस तरह से मार्केट में मतलब वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग मतलब वर्क करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद या कुशलता के बाद उसको उसके अनुरूप कार्य मिल सके, मतलब वो चाहे आपका रोजगार हो, चाहे वो मतलब अप्रेंटिसशिप हो, चाहे स्वरोजगार हो, हमारा बेसिक उद्देश्य उसके लाइवलीहुड को उसको प्रदान करना और उसके पुनर्वास में और उनके जीवन स्तर को निर्वाह स्तर को ऊपर उठाना है। ये हमारे प्रदेश शासन की और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं।
1: जी जी, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में कई युवाओं को रोजगार से जोड़ा है, ग्रामीण जो सर्वे हुए हैं वहां भी खूब

0: उनको किट्स भी मिली हुई हैं और प्रशिक्षण और साथ ही साथ उनको कुछ स्टाइपेंड भी मिला हुआ है। रोजगार कार्यालय और क्या भूमिका निभाता है, जैसे प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कौशल से जो स्किल्ड जो बच्चे होते हैं कौशल विकास योजना के, तो उन्हें कैसे रोजगार मिलता है या किन किन कंपनियों में मूल रूप से प्रयास रहता है कि ताकि वो रोजगार से जुड़ पाए?
1: देखिए, जो रोजगार की कंपनियां हैं उसमें हम स्किल्ड बच्चों के लिए फोकस करते हैं, इसके साथ साथ हम अनस्किल्ड बच्चों पर भी फोकस करते हैं। दूसरा हमारा फोकस रहता है क्षेत्र का, कुछ जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो हम कोशिश करते हैं कि आसपास की कंपनीज बुलाएं। तीसरा फोकस हमारा रहता है डिफरेंट सेक्टर्स का, किस सेक्टर में बच्चा जाना चाहता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनको अच्छा लगता है, कुछ कमीशन बेस्ड कंपनीज हैं में जाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, तो हम सभी से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग हर एक फील्ड की एक एक कंपनी कम से कम आए, जिससे बच्चों को वैरायटी कंपनीज मिल सके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मतलब ये भी कोशिश करते हैं कि अगर अनस्किल्ड ही है बच्चा तो भी मतलब उसको बिल्कुल अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अधिकार है कि वो मतलब अगर उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग हम पुश कर सकें। जैसे सर ने बताया है कि 7 दिन की ट्रेनिंग कुछ RPL होती है, जैसे उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इस तरह से हम मतलब उस कुशलता को वो पहचानते हैं और उनको इंटरव्यूअर जो आते हैं कंपनी के उनके सामने मतलब हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों को। इस तरह से हम मतलब लगभग और डिफरेंट वो उसमें करते हैं, जिससे बच्चे को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिल सके।
2: श्रोताओ, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में मुफ्त प्रशिक्षण और सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को मिल रही हैं, साथ ही उन्हें भोजन के साथ साथ स्टाइपेंड भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ जाइए और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। इसी के साथ डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति, अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। योगदान था आकाशवाणी छतरपुर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हमने लिया है फिल्म उत्सव से। स्वर लता मंगेशकर और आशा भोसले के। ये गीत लिखा है बसंत देव ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला और बेहद खूबसूरत गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बाजार से, स्वर है लता मंगेशकर और तलत अजीज के। ये गीत लिखा है मखदूम ने और संगीत है खयाम का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है एक अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

0: और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
3: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM, IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
5: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिक

0: पर कायराना आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष

0: का विषय है जनजातीय धाय सम्मान जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled, while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. sharing a video.

0: से मनसूख की गई हैं, जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत-ए-मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो खेलकूद में शिरकत करते हैं वो तरक्की करेंगे। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: 23 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुनक़िदा खेलकूद मुकाबलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 4th मकाम पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलकूद मुकाबलों में मजमूई तौर पर 39 तमगे हासिल किए। इनमें सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। शहरियों के माबैन हुब्बुल वतनी को फरोग देने, कौमी यकजहती को मुस्तहकम करने और भारत की सकाफती विरासत को फरोग देने के लिए मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम की तकरीबात मनाई जा रही हैं।

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था, ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अयादा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिल कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियाँ, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़िद करने की मनसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले तलबा के ज़्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इतफाक़ हो गया है। रियासती वज़ीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तिहानात और 2023-25 के बैकलाग इम्तिहानात मनसूख करने से इतफाक़ किया है। वज़ीर मौसूफ़ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मुजरिमाना पहलुओं की CID तहकीकात और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के क़याम पर भी इत्तेफ़ाक़ किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाज़े पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की ख़वातीन के माथे के सिंदूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष

नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया।

0: का इफ्तिताह करते हुए कही उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा सिंदूर महारक्तदान यात्रा का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया उन्होंने कहा कि ये इकदाम बेलौज खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है वज़ीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज़्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है उनमें से 1,00,00,000 से ज़्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सतेंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में माशी तौर पर कमज़ोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी इनमें आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात जम्मू कश्मीर झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं पेश है एक रिपोर्ट
1: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फहरिस्त के अफराद के लिए 14,000 से ज्यादा दर्ज फहरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ़ फराहम करना समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया जिससे जीजियांग और फुजान सूबे मुतासर हुए हैं इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है इस दौरान शंघाई के दो हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानी बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ये बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाक़े की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है वजारत ने इस वाक़े को एक संगीन वाक़िया करार दिया है ये वाक़िया इस माह की 4 तारीख को पेश आया जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था

0: भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाक़े जुनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत की तनसीब शुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 गीगावाट के हदफ से तजावज़ कर गई है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हासिल करदा ये बड़ी कामयाबी 2030 के लिए 500 गीगावाट सलाहियत के हदफ का 60% ज्यादा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का इयादा करें। झारखंड की सरकार ने इल्जामात और बेजाब्तगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तहानात को मनसूख करने से इत्तेफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज़्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संगमील अबूर कर लिया है। और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरिगन में हुई 2026 वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने कार्यक्रम में पहला गीत लिया है फिल्म तराना से, जिसे गाया है शैलेंद्र ने। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी ने। इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजिए आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से, स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के, शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शिवहरी का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव इसी गीत के लिए हम तक पसंद लिख भेजिए। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म लव स्टोरी से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। पसंद हम तक लिखी भेजी है सभी श्रोताओं ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुना चाहे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। और इसी गीत को पसंद किया है इचल करंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और परिवार की सभी सदस्यों ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए।

इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत परेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र, धर्मेंद्र और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से श्री प्रवीण शिवाली, मीना शिवाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनू राज और इनका पूरा शिवाली परिवार। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, पोत्री अफिया खान, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आपने भी इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत। स्वर है हेमलता की, गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है उषा खन्ना का।

इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
0: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन is an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an accomplished Carnatic classical vocalist and violinist. She received her initial training under Srimati V. Lalita, followed by advanced tutelage under

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of त्यागराज स्वामी in the राग आनंद भैरवी set to आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू कंडचापुताल।

0: इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते

0: हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.